कहीं प्राप्त मानुख देहरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बैठ अमूल्य जीवन लेके आए हैं कि अमूल्य खरीद ले इस जीवन भी अमूल्य है उसे का दिता होया है उसकी चीज ही तू अर्पण करनी है कड़ी तू अपने को तेनू उनके बदले में अमूल मिल जाने अमूल का व्यापारी बन के आ मुल का व्यापारी बन के चला जा फिर तेरा जीवन

0: तो आओ, जीवन अमोलक है। अमोलक जीवन नु गुआने नहीं। अमोलक जीवन नु व्यर्थ नहीं गुआना। गुरु ने बाणी भी एक थावे उलंबा दिता, कहन लगे मैं देखदा की हां जय है आटा लून ज्यो सोन समान सरी सुनने वर्गी कंचन काया कोट गाय। इन्दे विच हर हर सिद्धा हरी नु सिद्ध करन दी बजाय ए कंचन काया नु सोन समान शरीर नु आटे लून वांगू गुवारे। ते आटे लून दी हालत की है, मनुख आटे लून दा बनाया होया भोजन बड़े शौक नाल खांदा है, वेख वेख खांदा है, पर खान नु खान तो बाद गुआ लैंदा है। अद्धे घंटे बाद विश्ता हो जाता है। गुरु कहते हैं तू जिंदगी दे इस पवित्र भोजन नु एवं गुआ रहे। जय है आटा लोन ज्यो सोन समान शरीर, इसलिए इन व्यर्थ ना गुआ। ए अमोलक वस्तु तेन प्रभु ने ही दिती है, ते इस अमोलक वस्तु दे बदले विच प्रभु नु ही लै जा। अमोलक दा व्यापार अमोलक नाल हो जाए। इन्हां शब्दां नाल सिमादा जा चुक हां। फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, singhsabha2@gmail.com, singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

जीवन सुहागणा का शुभ गुणवंतियां का तेरे नाल जुड़ के लंघ जांदा रतियां रहिंदियां ने तेरे प्रेम विच रंगियां रहिंदियां ने ते मैं छुट्टण नूं दुआगण नूं भी एक रात भाव थोड़ा समा तेरे नाम का मिल तेरे नाम नाल जुड़ना मिल जाए बड़े प्रेम एकाग्रता सहित सारिया ने सरवण किया है सब का हार्दिक तौर पर धन्यवाद भुलां चुकां की खिमा जरूर ही निमाणे सेवकों की झोली च पा देना कल का दिन होर हाजरी प्राप्त हुई है आओ फतेह बुलाने तो पहला आखिरी पंक्तियां का पाठ सारे रल के करिए।

चेतन आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखा कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाय सो पातशाह शाम पात साहिब सो पातशाह शाम पात साहिब नानक रहन रजाई।

तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करया। सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया।

चौपाई। हमारी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण हो हे चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो व्रत।

तो मैं शाढ़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सेख हमारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है। आप हाथ दय मुझे भरे आए, मरण काल का त्रास ने भरे आए।

वेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव।

केहेबद सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं भूपा अंड जजे रज से तिज किने पोत पुज खान बहोर रच दीने कहूं फूल राजा भ बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आदि जुगाद स्वरूप सुजंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार या सिख संगरो दोष जिते उठवत उत पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्तुज तब शरणी परे तिनके दोष्ट दुखद वह मरी पुरख यवन पग परे त्यारी तिनके तुम संकट सब टारी जो कल को एक बार त्याए हैं ताके काल निकट नहीं आए हैं।

हदवा जी आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विस्तूरे।

सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। अंतरजामी पुरख बजाते श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। थोड़े आ गए अरदास हमारी जीव है।

उनका काका गुरतेज सिंह जो कि सुप्रीत वाले एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट जिदे विच के बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड ने बट वो अगे नहीं आ पा रहे फाइनेंशियली सपोर्ट ना होने करके सो इन्हों बच्चों विचों एक बच्चा है कि उन्होंने बच्चों विच इन्ना टैलेंट है लेकिन वो अगे नहीं आ पा रहा सो आओ असी भी इन्होंने बच्चों की हेल्प करिए जरूर जिस तरह कल बेनती की गई थी कि एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट दे विच असी अपने पंजाब के बच्चों संभालिए उसके वास्ते जरूर मदद करिए सो आओ हुण बच्चा गुरतेज सिंह जो कि एक कविता आप सब सरवण करवाएगा जी बड़े प्यार नाल सरवण करन दे कृपालता करनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

चौथा पद पाया। गुर गोबिंद खुदाई पीर, गुर सिख पीर मुरीद लखाया। सच शब्द प्रगाश कर, शब्द सुरत सच सच मिलाया। सच्चा पातशाह सच पाया।

0: 上がれ。ねずたんだ、はるめくるでしてしかあれ。さてかあれね、じょうねるだん、さるだんけいじゃえ。わすてかえさえ。あがるけどれ、だんわん、ねるだんでがらあれ。ねるだんあだるさてかあなる、うすむじゃえぐたんだ。जो सर धन निर्धन के जाए दिया आदर लिया बुलाए पर जो निर्धन सर धन के जाए आगे बैठा पीठ फिराए उसे पीठ करके बैठ जाता है उसे गलबात भी करने को तैयार नहीं क्यों इसकी जेब दे चार कौड़ियां नहीं है ये धनवान नहीं है तो अक्सर जगत देख देखेंगे सत्कार धन का है प्रभुता का है जो बंदा है मनुखता का कोई सत्कार नहीं मनुख का कोई मान नहीं अगर कोई मनुख किसे मनुख का सम्मान कर रहा है दरअसल भुलेखा है किसे भी मनुख का सम्मान नहीं है ये धन का सम्मान हो रहा है जो बंदा सम्मान हो रहा है प्रभुता का सम्मान हो रहा है भगत कबीर कहने ने निर्धन सरधन दोनों भाई प्रभु की कला न मिटी जाई और आप अपने अनुभव के आधार से कहने में कहो कबीर निर्धन है सोई जानते हृदय नाम ना होई वास्तविक उसको निर्धन गिन लो जिसके अंदर परमात्मा का नाम नहीं है धनवान सिर्फ इस दुनिया के सम्मान पाते ने पर जिनके अंदर धर्म है नाम की दौलत है वो तो भगवान की महफिल के सम्मान पाते ने सत्कार पाते ने अमर धन प्रभु का नाम है पर मनुख ने धन इतना दुर्लभ समझ लिया है ये धन की खातर जीवन त्याग सकता है ये धन की खातर धर्म त्याग सकता है ये धन की खातर किसी हद तक अपना ईमान अपनी अणख नु त्याग सकता है और धन की खातर हो सकता है अपनी इज्जत भी बेच दे दे असमत भी बेच दे संसार देख ऐसा है धन का ऐसा प्रभाव है कि मनुख की सारी भज दौड़ का मरकज धन बन गया किसी जमाने साडे देश दे मनुख की भज दौड़ का मरकज धर्म से तो उन्होंने दिनों ऋषि पैदा हो रहे सन मुनि पैदा हो रहे सन संत पैदा हो रहे सन भगत पैदा हो रहे सन जोगी पैदा हो रहे सन त्यागी पैदा हो रहे सन वैरागी पैदा हो रहे सन अज जिंदगी का लक्ष्य बदल गया अज धर्म दुर्लभ नहीं है धन दुर्लभ है तो सिर्फ धनवान पैदा हो रहे हैं कोई ऋषि नहीं पैदा हो रहे कोई जोगी जंगम नहीं पैदा हो रहे कोई संत नहीं पैदा हो रहे एक दौर इस देश में ऐसा लंघे है कि गली गली रिच साधु हर घर सत्संग का अखाड़ा हर घर विच ऋषि हर घर विच मुनि अज ऐसा नहीं अज ते घर विच सिर्फ धन है बाकी कुछ नहीं और जिन्हों को नहीं उन्होंने भज दौड़ भी धन की खातर है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ने नच दुर्लभं धनं रूपं धन तो बाद अगर इसकी जेब भर गई है अगर इसकी तिजोरी भर गई है अगर इसका घर भर गया है तो फिर ये प्रभावित होता रूप तो सुहप्पन तो सुंदरता तो धर्म तो प्रभावित हो सके कथा सुननी पैंदी है कीर्तन सुनना पैंदा है किसी धार्मिक मंदिर में जाना पैंदा है किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ पठन करना पैंदा है लेकिन धन को प्रभावित होने लिए सब कुछ करने की लोड़ नहीं मनुख आप ही प्रभावित होता है रूप तो प्रभावित होने लिए कोई व्याख्या सुनने की लोड़ नहीं किसी ग्रंथ नु पढ़ने की लोड़ नहीं किसी विद्यालय में जाके शिक्षा प्राप्त करने की लोड़ नहीं कि मैं रूप तो किवें प्रभावित होवां मनुख दे ज्ञान इंद्रे रूप तो अपने आप प्रभावित होंदे अखां दे उपर असर जो पैंदा है रूप दा और अखां अपना असर मनुख दे मन नूं दे दिंदियां इस तरह मनुख दा मन रूप दी परिक्रमा करदा रहिंदा है स्वप्न भी जो है परिक्रमा करदा रहिंदा है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने रूपवंत होए नाही मोहे प्रभु की जोत सगल घट सोहे वास्तविक सतगुरु इत्थे समझांदे पैने जिस रूप दे आले दुआले तू मदमस्त होया फिरदा है یہ زندگی دولت سے نہیں ہے، یہ جیون کی منزل نہیں ہے، پر منک پربھاوت ہے۔ دیکھتے ہیں اسی بچی بچے دے رشتے وچ، یہ نہیں دیکھنا شیل ہے کہ نہیں، سنجم ہے کہ نہیں، دوہاں دی دیا میتری بھاو پریم ہے کہ نہیں، گیان وگیان ہے کہ نہیں، اس نوں بالائے طاقت رکھیا جاندا ہے، دیکھیا جاندا ہے سوپن ہے کہ نہیں، خوبصورتی ہے کہ نہیں، گن کر کے سنبند نہیں، گیان کر کے سنبندی نہیں بنانا، پریم بھائی چارے کر کے سنبندی نہیں بنانا، بنانا ہے سنبندی دھن کر کے، روپ کر کے۔ تو صرف روپ دا ہی چناؤ ہے اجوکی سماجک رشتیاں دے، منک اسے تو جو ہے پربھاوت ہے اور آد کال تو پربھاوت چلے آ رہے ہیں۔ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو روپ تو پربھاوت ہے اور جنہاں کول روپ ہے دوہاں دی درشٹی کوئی بہت گہری نہیں ہوندی، جو روپ تو پربھاوت ہے اور جس دے کول روپ ہے کدی دنیا چوٹی دے شاعر کبھی دارشنک فلاسفر اس کی جگت دے تسی دیکھو تو 99% او ملنگیاں جو کروپ نے کسے گھاٹ رہے انہوں نے اس پاسے پرے رہا، پر جو روپوتی ہے جہدے کول سروپ ہے وہ اس دے آلے دوالے پرکرما کردی رہ جاندی ہے اور اپنا روپ ویکھ ویکھ کے اتنا مست ہو جاندی ہے، انہوں دارشنک بنن لئی، کبھی بنن لئی، چترکار بنن لئی، مہان بنن لئی، گیاتا بنن لئی لوڑ ہی نہیں بھاستی۔ روپ وند نو روپ اپنے دائرے چ الجھا کے رکھ دیندا ہے اور روپ دوسرے دی اکھاں تے وی پربھاوت پان اپنا پربھاؤ چھوڑدا ہے اور وہ پربھاوت ہوندے نے۔ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج کہندے نے روپ وی کوئی درلب چیز نہیں ہے، سوپن جیون دی لوڑ ہو سکتی ہے، جیون دا لکش نہیں، زندگی دا پڑاؤ ہو سکتا ہے، زندگی دی منزل نہیں۔ نچ درلبھنگ دھنن روپنگ نچ درلبھنگ سورگ راجنے، دھن تے روپ تو بعد منک پربھاوت ہے راجنیتی تو۔ ساری دنیا دچ اس دور دچ راجنیتی دا اتنا پربھاو ہے، منک پڑھ رہے اخبار صرف راجنیتک لوگاں دیاں چالاں انہاں دیاں جیون کتھاواں، جتھے بھی کوئی چرچا چل رہی ہے بحث مباحثہ چل رہا ہے ساری دنیا دچ، 90% ساری چرچا آپسی راجنیتی تے آدھارت ہے، کیونکہ منک اسے تو پربھاوت ہے۔ گل بات چلے گی دھن دی، گل بات چلے گی روپ دی، گل بات چلے گی راجنیتی دی، چرچا دا وشا کی ہوئے گا راجنیتی، دھن تے روپ، مانو یہ بھی سب کچھ ہے، اس تو بنا ہور کچھ نہیں۔ اخباروں دی چھائی ہوئے گی راجنیتی، وچاراں دی چھائی ہوئے گی راجنیتی، گل بات دا مدعا ہوئے گا دھن تے روپ، تو پھر قدرتی گل ہے یہ پوجنیک بن جان گے، یہ درلب ہو جان گے۔ تو دھنوان نہیں پوجیا جا رہا، دھن پوجیا جا رہا، روپوان نہیں پوجیا جا رہا، روپ پوجیا جا رہا، راجنیتک نہیں پوجیا جا رہا، راجنیتی پوجی جا رہی ہے۔ کہ جب راجنیتی پوج ہو گئی، دھن پوج ہو گیا، روپ پوج ہو گیا، تو پرماتما جو وہ آروپ ہے، جو پرم ہے، وہ تے پوج رہے گا نہیں، تو اجوکی دنیا منک دی نظراں وچ پرماتما کوئی پوج نہیں رہ گیا، ایشور کوئی پوج نہیں رہ گیا۔ جدکہ گروانی کہندی ہے یہ دھن تے روپ تے پربھتا کیونکہ پرماتما دی چھایا ہے، مہا مائی تاں کی ہے چھایا، منک چھایا تو پربھاوت ہے، جس لیے چھایا ہے اس تو پربھاوت نہیں ہے، اس تے آلے دوالے یہ پرکرما نہیں کر رہا۔ گھن گرو ارجن دیو جی مہاراج کہندے نے اے منک سچیت ہو، ساودھان ہو، نچ درلبھنگ دھنن روپنگ، نچ درلبھنگ سورگ راجنے۔ ایک اردو دا شاعر تے تھے تک کہندا ہے خدا نے حسن نادانوں کو بخشا، زر زلیلوں کو، عقل مندوں کو روٹی خشک، اور حلوا بخیلوں کو۔ मनुख ऐसा है, साहब कहंदे ने कि बेवकूफ लोग ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और बेवकूफ लोग ही जलील लोग ही बहुत बड़े जरदार दिखाई देते हैं। धन जड़ है तो धन का पुजारी जड़ हो जाएगा, धन जड़ है ठोस है, धन भी परिक्रमा करने वाले का दिमाग भी ठोस हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। और यही कारण है कि जो धन की परिक्रमा करता पे एक दिन सूम हो जाएगा, एक दिन इतना ठोस हो जाएगा शायद पत्थर भी इतना सख्त ना होवे जितना वो सख्त होवेगा। और देख दे इस तरह के जुल्म उन्होंने लोगों ने ढाए जिन्हों के दिमाग ठोस हो गए। कि ठोस किन्हों के दिमाग हो गए, जो धन के पुजारी सन, रूप के पुजारी सन और राजनीति के पुजारी सन। चाहिए राजनीति दासी की तरह, चाहिए धन दासी की तरह, नौकर की तरह। जैसे सतगुरां की बाणी कहती है, माया दासी भगतां की कार कमावे। इत दासी है, भगतां की सेवा कर दी है, लेकिन संसारियों की ते मालकन है। इत उन्हां दी साहिब बन जाती है, मालक बन जाती है। ये तीन रूप भगत कबीर ने बड़े सोहने बयान किए ने। स्वागन है अत सुंदरी, पग नेवर छनक छन हरी, सुहागन किरपन की पोती, सेवक तज जगत संसोती। सुहागन माया नु आखे, धन नु आखे, और माया नु धन नु सदा सुहागन आखे। रंडी कदी नहीं आउंदी, क्यों? खसम मरे तो नार न रोवे, उस रखवारो और ही होवे। धन दा मालक मर जाए तो उस माया दा रखवाला उस वक्त पैदा हो जाता, जिस वक्त जिहड़ा मरे है उस वक्त दूजा रखवाला हो गया। ये रंडी नहीं होंदी, माया रंडी नहीं होंदी, बेवा नहीं होंदी। बकौले भगत कबीर, खसम मरे तो नार न रोवे। मालक मर जाए, खसम मर जाए, नारी नहीं रोंदी, इस्त्री नहीं रोंदी। क्यों? उस रखवारो और ही होवे, उदा रखवाला उस वक्त पैदा हो जाता है, पुत्र पैदा हो जाता है, पोतरा रखवाला हो गया, भरा रखवाला हो गया, मां बाप रखवाले हो गए ने, कोई भी नहीं कि सरकार हुकूमत रखवाली है। धन कदी बेआसरा नहीं होंदा, माया कदी बेवा नहीं होंदी। इस वास्ते विद्वानों ने कहा है कि ते सदा सुहागन है, कोई ना कोई इसका रखवाला हो जाता है, कोई ना कोई इसकी परिक्रमा करता ही रहता है, ये खाली नहीं। सुहागन है अत सुंदरी, भगत कबीर कहते ने यह संसारियों लई अति सुंदर है, बहुत सुंदर है। और संसारी मनुखां दी परिक्रमा इसे सुंदरी के आले दुआले। इस सुंदरी दे अगों कबीर तीन रूप पेश करते ने। सुहागन किरपन की पोती, ये जो सदा सुहागन है ये सुन बंदे दी धी है, इन्हें छुपा के रखता है। जैसे प्राचीन समाज ते अजोका कुछ थोड़ा जिहा समाज जवान बच्ची नूं पर्दे च रख दें, छुपा के रख देने, हिफाजत दे जहर रख देने, ताकि इसकी इज्जत बरकरार रहे और इस दासी कोई घर ढंग नाल लग सकी है। छुपा के रखता है, सूम हमेशा धन नो छुपा के रखता है, अपने बच्चियां तो भी, मां बाप तो, बरा तो, कई दफा पत्नी तो भी। और गुरबाणी ऐसा कहती, सब कुछ तो छुपा के रखता है। क्यों? ये उसकी बच्ची है, ये केवल उसकी पुत्री है। ऐसा एक प्रत्यक्ष रूप भी मेरे देखने दे आया, किसी घराने दे एक पत्नी ने सवाल कह दिता मैनु कि मेरे इस सरताज पति का स्वभाव सारिया नाल चंगा है, बर्ताव सारिया नाल चंगा है, लेकिन अपने परिवार नाल चंगा नहीं, बच्चिया नाल चंगा नहीं, मेरे नाल चंगा नहीं। एकांत विच मैं पूछया, ऐसा क्यों? थोड़ा वर्ताव हर एक नाल चंगा है, मैनू कहन लगे गैनी जी साडी राजनीति है थोड़े जिहा घर दे खुल जाइए तो बच्चे लंबी चौड़ी लिस्ट पेश कर देने ने ए चाहिदा ए चाहिदा ओ चाहिदा ते पत्नी भी लंबी चौड़ी लिस्ट पेश कर देंदी है मैं खून पसीना एक करके धन कमाया है तो इन्हां दे हवाले कर दिया इस वास्ते मैं आकड़ के रहना चिड़ के रहना दबाव बनाई रखना ताकि सारे डरे रहन ते दूर रहन। दरअसल वाकई सियाणा मनुख चाहुंदा है मेरी बच्ची छुपी रहे एक पासे रहे जने खने जी निगाह दे थले ना होवे सोम मनुख धन नूं अपनी बच्चियां तो भी बचा के रखेगा अपनी पत्नी तो भी ओझल रखेगा अपने मां बाप को भी ओझल रखेगा और धन की खातर मां बाप कुर्बान कर देगा और धन की खातर बच्चियों भी कुर्बान कर देगा और धन की खातर वो पत्नी के रिश्ते विच भी दराड़ खड़ी कर देगा क्योंकि दुर्लभ धन है दुर्लभ पत्नी नहीं है दुर्लभ धन है दुर्लभ बच्चे नहीं ने दुर्लभ धन है दुर्लभ मां बाप नहीं है दुर्लभ धन है दुर्लभ परमात्मा नहीं है। सोम बंदा भगत ते हो ही नहीं सकता क्योंकि सोम मनुख दा दायरा बहुत तंग हो जाता है जब भगत दा हिरदा बहुत विशाल होता है या भक्ति उदों ही प्राप्त होती है जब किसी दा हिरदा बहुत विशाल हो जाए बहुत खुला हो जाए सारा संसार उसनु अपना दिखाई देवे पर सोम मनुख नु ते अपने भी अपने नहीं दिखाई देंदे अपने भी बेगाने दिखाई देंदे ने। सुहागन किरपन की पोती सेवक तज जगत संसोती जगत की ए स्त्री है इस तो रस लेंदे ने इसनु वरतदे ने किरपन दी सोम दी ए धी है पर जो परमात्मा दा सेवक है ये उसकी सेवक है ये उसकी नौकराणी ये उसकी दासी है। इंज धन दे इस तरह माया दे तीन रूप बयान किए ने ए धी है ए पत्नी है ए नौकराणी संसारियां दी पत्नी है सोम दी धी है भक्तां दी दासी है उन्हां दे पिछे चल दी है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने कि जैसे मनुख दे अंदर त्याग दी भावना पैदा होती है तिनी माया उसकी परिक्रमा करन लग पैंदी उस दे जो है पिछे चल पैंदी है। एक उर्दू दे शायर दा भी कहना है भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम अब जो नफरत हमने की वो बेकरार आने को है कहो नानक जो त्याग दई तब ओ सरनी आए पई। नच दुर्लभं धनं रूपं नच दुर्लभं स्वर्गराजने धन ते रूप तो बाद मनुख प्रभावित है सता तो क्योंकि सता करके ही प्रभुता है प्रभु सता है। इस वास्ते भज दौड़ दा मरकज सता बन जाती है कि सता प्राप्ति दे तौर तरीकियां नूं राजनीति कहंदे ने। अगर धन छल ते कपट नाल बेईमानी नाल प्राप्त होवे ते राजनीति प्रभु सता सता सिंघासन प्राप्त करन वास्ते शाम दाम दंड भेद नूं वरत्या जाए तो इह भी मनुख दी आत्मा नूं थल्ले लै जांदा है राजनीतक बहुत पस्ती दे चला जाएगा क्योंकि उसकी सोचनी की है दूजियां नूं खरीदना दूजियां नूं काबू करना दूजियां नूं जकड़ना दूजियां नूं दबाना और इस हद तक दब जान कि मैं उन्हां दे सिर ते बैठ जावां। इस वास्ते राजनीतिक जितना कठोर हो जाएगा उस दे विपरीत उतना ही संत कोमल है भगत कोमल है। दुनिया विच बहुत वड्डे खून खराबियां दा कारण राजनीति है और जब तक इस तरह की राजनीति सारी दुनिया च रहेगी खून खराबे होंदे रहेंगे। राजनीति का मतलब ही है दूसरा अगर सिर दे ते बैठने की थां नहीं देंदा तो सिर मिटा दो कत्ल कर दो सुट दो। और यही कारण है कि राजनीति फैली शस्त्रों के आसरे थे वो देश उतना संपन्न हो गया उतना महान हो गया جس کل بڑے بھیانک گھاتک شستر اومن اج اوہی شکتی شالی اس دا ہی سنمان ہے جدی کل ہائیڈروجن بم ہے میزائل نے ایٹم بم ہے دنیا نو ناس کرن لئی جس دے کل جتنا سازو سمان ہے دنیا اتنا ہی سنمان کر لئی ہے اے کیسا منک ہو گیا کہ سنمان اس دا جو دوسرے دا اپمان اس حد تک کر سکتا ہے کہ کیڑے مکوڑیاں دی طرح ایک سیکنڈ وچ پورے شہر نو ختم کر سکتا ہے کچھ چھناں وچ پورے ملک نو مٹا سکتا ہے سیانے تے اتھے تک کہہ رہے نے کہ اتنے بم ستا دھاریاں کول پئے نے کہ اس پرتھوی نو سات دفعہ مٹایا جا سکتا ہے سات دفعہ برباد کیتا جا سکتا ہے جدکہ ایک دفعہ برباد ہون نال یہ برباد ہو جائے گی پر سات دفعہ نیست و نابود کرن دا سازو سامان منک دے کول اج پراپت ہے اپلبدھ ہے راجنیتی کھڑی ہے دوجے نو مٹان تے دوجے نو دبان تے دوجے نو خریدن تے دوجے نو خریدنا ہے اگر وکڑ نو تیار نہیں دوجے نو دبانا ہے دبن نو تیار نہیں دوجے نو مٹانا ہے کہنے نے چنگیز خان ہلاکوں بستیاں اجاڑ کے لنگ دے سن لاشاں دے پنوس دے گھوڑے لنگ دے سن سٹھ لکھ یہودیاں دا قاتل ہے ہٹلر اور پوری تباہی جڑی اس تو ہوئی او کل 2 کروڑ منک اس دے ہتھی قتل ہوئے غالباً کروڑاں منکھاں نوں موت دے گھاٹ اتار کے رشیا وچ کرانتی آئی اور 2.25 کروڑ منکھاں دی قبراں بنا کے ہی چائنا وچ کرانتی آئی شاید اس واسطے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے سوچیا اگر دھن دھرم نال سمبندھت ہوئے تو دھنوان دانی ہو سکتا ہے دھرم نال روپ سمبندھت ہوئے تو روپمند مہان او اروپ جو پرماتما ہے اس دا پجاری بن سکتا ہے اور دھرم نال کدرے راجنیتی سمبندھت ہو جائے تو اے راجنیتک بہت وڈا سیوادار بن سکتا ہے قوم دی سیوا دیش دی سیوا کرن والا ایک بہت وڈا سیوادار پر جے دھرم تو وکھ کر دئیے اس راجنیتی نو تو دیش دا غدار بن جائے گا دیش دے سر تے بیٹھ جائے گا دبا کے رکھ دے گا مٹا کے رکھ دے گا غلام بنا کے رکھ دے گا خرید لوے گا ساری دنیا وچ دھرم ہین راجنیتی نے غلام پیدا کیتے نے دبے ہوئے منک پیدا کیتے نے یا قبراں ہی قبراں نو جنم دیتا ہے خون دیاں ندیاں نو جو ہے جنم دیتا ہے 20ویں صدی دے ہو گزرے مشہور و معروف شاعر جنہاں نے ایک بڑا سندر قومی ترانہ بھی لکھیا سی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا لیکن اس مہاپرش دیوی اے وچار میں جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی دین نو سیاست تو ایک پاسے کر دو چنگیز پیدا ہونگے ہلاکو پیدا ہونگے دین نو راجنیتی نال جوڑ دو تو نو شیروان عادل پیدا ہونگے جنک پیدا ہونگے مہاراجہ رنجیت سنگھ پیدا ہونگے اور اسی دھرم نو راجنیتی تو وکھ کر دو تو پھر ہٹلر پیدا ہونگے موسولینی پیدا ہونگے چنگیز خان پیدا ہونگے ہلاکو پیدا ہونگے بدقسمتی ہے اج تک اسی پورن طور تے دھرم نو راجنیتی نال جوڑ نہیں سکے تو جنک تے ایک پیدا ہویا ہے ہر ناقص بہت پیدا ہو رہا ہے اسی دھرم نو ویاپک طور تے راجنیتی نال جوڑ نہیں سکے تو رام تے ایک پیدا ہویا راونا دی قطار لگی ہوئی ہے پیدا ہی ہوندے جا رہے ہیں پیدا ہی ہوندے جا رہے ہیں اسی طریقے دے نال جس مہاپرش نے گیتا جیسے برہم گیان نو راجنیتی نال جوڑیا اس طرح دا کرشن تے ایک کوئی ہویا ہے پر کنس تے قدم قدم تے موجود نے دریودھن تے قدم قدم تے موجود نے سارے سکھ اتہاس نو پڑھ کے دیکھیے तो महाराजा रणजीत सिंह जैसा तो केवल एक ही है जो धर्म की मूर्ति है, दया की मूर्ति है, इंसाफ की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है। लेकिन इसी धर्म नो राजनीति नाल जोड़न दे ये कौम भी असमर्थ रही है तो फोके छलिया कपटी पैदा हो रहे हैं, दबाण वाले मिटाण वाले पैदा होने हैं। ये भी दूजे नु खरीदना चाहते ने, सच कह दिता है, सही कह दिता है इकबाल ने, जलाले पातशाह ही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दिन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। सच्ची राज सत्ता की है, इसनु कलगीधर दी शान शौकत दे जो सिखा ने उजागर किया, आकी रहे न कोई, कोई बागी ना होवे, कोई विद्रोही ना होवे, कोई दुखी ना होवे। अगर कोई आकी है, पंजाबी दा ए आकी शब्द, इस दे अक्षरी अर्थ करिए तो विद्रोह, इस दे अखरी अर्थ करिए तां बगावत, इस दे अखरी अर्थ करिए तो इंज कह दईए अतवादी। क्यों आकी रहे ना कोय, साहिब कहंदे ऐसी राज सत्ता चाहीदी है सारी दुनिया विच, आकी कोई भी ना होवे, विद्रोही कोई भी ना होवे, बागी कोई ना होवे। कहंदे ने एथन विच अज तो 2500 साल पहले एक महान संत होया सुकरात, उसने कह दिता समाज दे सताए हुए मनुख समाज सुधारक बन जांदे ने, और घरेलू झगड़ियों दे सताए हुए मनुख फकीर बन जांदे ने, हकूमत दे सताए हुए मनुख सता दे सताए हुए मनुख विद्रोही हो जांदे ने, आकी हो जांदे ने, बागी हो जांदे ने। सुकरात कहा करदा सी जिस मुल्क दे सिर्फ बनावटी फकीरां दे टोले बहुत ज्यादा होवन, समझ लेना उत्थे घरेलू औकड़ां बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने। और जिस देश दे समाज सुधारक गली गली च घूम रहे होवन, समझ लेना उत्थे समाज दे कुरीतियां बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने। और जिस देश दे कदम कदम दे ते आकी विद्रोही मौजूद होवन, समझ लेना उत्थे सत्ता दे बेइंसाफियां बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने। साफ कह देता है इकबाल ने, दीन नो अलग कर दोगे राजनीति तो राजनीति फल फरेब और लड़ाई झगड़े ते खून खराबे दा अखाड़ा बन के रह जाएगी। जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। धर्म नु ना जोड़े राजनीति नाल तो राजनीति विच डाकुआ ने की पैदा होना है, डाकू स्वयं राजनीति विच आ जाएंगे, और बेशतर देशां विच डाकू राजनीति विच आ गए ने, और बिल्कुल कुबड़ लोग राजनीति विच आ गए ने। अगर ऐसे लोग आ जान तो फिर प्रजा नाल जो कुछ हो सकता है वो सारी दुनिया विच सामने है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, ऐ मनुख सता कोई इतनी दुर्लभ नहीं कि तेरा जीवन इसते ही आले दुआले परिक्रमा करदा रहे, इसके आले दुआले जो है घूमदा रहे, ये कोई दुर्लभ नहीं। अगर तू सताधारी हो भी जाए, तेन सता की प्राप्ति हो जाए और तेरी सता तो जगत आकी होवे, बागी होवे, दुखी होवे, तो ये सता तेन नरक दे चले जाएगी। साडे देश दे ते कहावत है, तपो राज राजो नरक, एक कहावत है, एक प्रचलित जो है दृष्टिकोण है साडे देश दे अपनाया गया। नच दुर्लभंग धनंग रूपं, नच दुर्लभंग स्वर्ग राज ने, साहिब कहने पृथ्वी की गल छोड़, अगर स्वर्ग का राज भी प्राप्त हो जाए तो ए राज भी कुछ नहीं। दूसरी पंक्ति दे सतगुरु दसते ने होर केड़ियां चीजा दुर्लभ ने जिसनु मनुख ने दुर्लभ जान के दुर्लभ मन के परिक्रमा करनी शुरू की है जबकि दुर्लभ नहीं ने। नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं, नच दुर्लभं स्वच्छ अम्बरे, भोजन मुंह दे चोवे ठीक है, भोजन पेट दे चोवे ठीक है, पर भोजन सोचनी दे चोवे, भोजन विचारां दे चोवे, भोजन चितनी दे चोवे तो रोग है। भोजन पेट दे चाहे तंदुरुस्ती है, भोजन मुंह दे चे स्वाद है, भोजन दिमाग दे चे सोचनी दे चे विचारा दे चे तो भोजन रोग है। रोग बन जांदा उदो भोजन जदों मनुख दी सोचनी विच केवल भोजन रह जाए, मनुख दे विचारां विच केवल खाना पीना रह जाए। और अगर मनुख बार बार खाण बारे सोचदा है कि इतना गल स्पष्ट है भोजन तो प्रभावित है। गुरु घर विच संगत दे नाल पंगत जोड़ी गई, संगत दे सिमरन चले, पंगत दे सेवा चले, संगत विच गुरबाणी दा कीर्तन चले, पंगत विच लंगर दी सेवा चले। गुरु नानक देव जी महाराज तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने संगत पंगत कठी रखी। लोड़वंद यात्रु जो दूर दूर तो आउंदे ने उना लई लंगर, जिन्हां नूं वक्ती तौर ते लोड़ पै गई है उना लई लंगर। लेकिन लंगर दे आसरे ते भोजन दे आसरे ते भजन दा प्रभाव पाण दी कोशिश करांगे गल नहीं बनेगी। पर भोजन नंबर वन हो जाएगा, प्रथम दर्जा भोजन दा हो जाएगा, भजन पिछे रह जाएगा। बहुत सारे भजन दे सथलां ते भी हुण भोजन प्रथम हो गया, भजन पिछे रह गया। खाण पीण दे आसरे ते सत्संग दा इकट्ठ करना है और सत्संगियां दी बिरती खाण पीण दे आले दुआले घुमदी रहिंदी है, पर कर्मा जो है करदी रहिंदी है। लंगर की मर्यादा सी भाईचारा पैदा करने लई, लंगर की मर्यादा सी दूर दूर तो यात्रु आवन ते उन्हां नूं सुख सुविधा प्राप्त हो सके, उन्हां नूं आके रोटी पानी बनानी ना पवे, लभनी ना पवे, ए उन्हां नूं मयसर होवे, ए उन्हां नूं प्राप्त होवे। बड़ी सोहनी सुचजी मर्यादा धन गुरु नानक देव जी महाराज तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक चल रही रही, हुण भी चल रही है। लेकिन किधरे किधरे देखण नूं मिलदा है कि मनुख दियां रुचियां बस लंगर दे आले दुआले परिक्रमा करके रह जांदियां ने। लंगर ना मिले तो दुखी हो जाएगा, पर गुरबाणी सुनन नूं नहीं मिली तो दुखी नहीं हुंदा, नाम जपण नूं नहीं मिलिया तो दुखी नहीं हुंदा, गुरु दे दर्शन करन नूं नहीं मिले तो दुखी नहीं हुंदा। इस तों मुख मुद्दा ही पंगत दा जो है खो जांदा है। तो साहिब कहिंदे ने भोजन को इतना दुर्लभ नहीं है। घर विच हुण रसोई महान हो गई, बाकी होर कुछ नहीं महान है। किसी वक्त घर घर विच धर्मशाल महान सी, पूजा घर महान सी, अज पूजा घर महान नहीं, अज रसोई महान है, भोजन महान है। सारे परिवार दी परिक्रमा रसोई दे आले दुआले, सारे परिवार दी परिक्रमा भोजन दे आले दुआले, सारा संसार रोटी दे आले दुआले घूम रहा है, भोजन दे आले दुआले घूम रहा है। और इसे नूं दुर्लभ समझ लिया, जीवन इसे लई बतीत हो रहा है। सतगुरु देव जी महाराज कह रहे ने नच दुर्लभं भोजनं बिंजनं, ए भोजन तरह तरह दा स्वादी 36 प्रकार दा ए बिंजन महाराज कहने इतना दुर्लभ नहीं कि तू अपना जीवन इसे लई बतीत करे। उदयपुर दा महाराजा जद राजयोगी भर्तरी नूं मिले जंगल विच, उस वक्त राजयोगी भर्तरी सत्तू पानी विच घोल के पी रहे सन। उदयपुर दा ए महाराणा भर्तरी नूं कहिंदा है राज पाठ त्याग के इस तरह दे योगी बन के फिक्के सत्तू खाने शोभा नहीं देंदे, तुसी राजा हो आओ साडे महलां विच। तो भर्तरी कहिंदे वैराग शतक दे कीमती बोल ने, मैं प्रसीद सत्तू सा गादे, तू प्रसन्न बिंजन बहु स्वादे। जितना स्वाद तू 36 प्रकार दे भोजन तो मानना है, इतना ही रस मैं सत्तू तो ले लेना। तू बिना भुख दे खाना, मैं भुख लगदी है तां खाना। तेनू स्वाद प्रेरदे ने तू खाना है, मैनू भुख प्रेरदी है ते मैं खाना। हुण तेनू कौन दसे स्वाद ते भुख दे च है। उस भुख करके जद मैं सत्तू खाना तो यकीन जान तेरे 36 प्रकार दे भोजन भी फिक्के ने, बेमैनी ने, कुछ भी नहीं। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी फरमान करदे ने रुपे कामे दोस्ती भुखे सादे गंड। वास्तविक स्वाद भोजन विच नहीं है, भुख विच है। और भुख करके जो खाउंदा है, एक एक बुरती अमृत है, एक एक निवाला अमृत है। पर स्वाद करके जो खांदा है, एक एक बुरकी रोग है, ਪਿਥਕ ਬੁਰਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਇਸ ਸਦੀ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦਾ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 90% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਹਾਰਕ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਰੋਗ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਭੋਜਨ ਰੋਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਭੋਜਨ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਭੋਜਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਦੁਰਲਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਭੋਜਨੰ ਬਿੰਜਨੰ ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਸਵੱਛ ਅੰਬਰੇ। ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਅੰਬਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਰਲਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਸੀ ਤਨ ਢਕਣ ਲਈ, ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਸਤਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਤਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰੰਨਾ ਹੋਈਆਂ ਬੋਧੀਆਂ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਸਯਾਦ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਸੁੱਚ ਬੰਨੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਜ ਅਖਾਜ, ਸਰਨ ਗਈ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਪਤ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਨਾਲ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਏਕ ਹੈ ਅਵਰ ਨ ਸੱਚਾ ਭਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੀ ਸੋਚਣੀ, ਰੰਨਾ ਹੋਈਆਂ ਬੋਧੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਹਾਵ ਭਾਵ ਬਣਾਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਸਿੱਖ ਸਾਧੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਅੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਣਾਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਣ ਤੇ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਲਈ, ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸਵਰਨਾ ਮਨ ਲਈ ਤਨ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਜਗਤ ਇਤਨਾ ਚੰਚਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਨ ਦੀ, ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਪਹਿਨਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਚੰਚਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੁਰਖ ਸਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਸਯਾਦ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਪੁਰਖ ਇਸੇ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਰਖ ਸਯਾਦ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਯਾਦ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੰਨਾ ਹੋਈਆਂ ਬੋਧੀਆਂ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਸਯਾਦ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਸੁੱਚ ਬੰਨੀ। ਕੋਈ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਸੁੱਚ ਬੰਨੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਜ ਅਖਾਜ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਅਖਾਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖਾਣਾ ਖਾਜ ਅਖਾਜ, ਸਰਨ ਗਈ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਪਤ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਨਾਲ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਏਕ ਹੈ ਅਵਰ ਨ ਸੱਚਾ ਵਾਲ। ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਝਲਕ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੀ ਧਰਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਤੋ ਪਹਿਨਣਾ ਸੀ ਤਨ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਪਹਿਨਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸੂਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਨੰਗਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਨੇ, ਤਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਵਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, नगन फिरत रंग एक के ओ शोभा पाए पाठ पटंबर बिरथया जय रच लो भाए। एक दे रंग विच रंगया होया एक दी भक्ति विच लीन है शर्मो हया दा कपड़ा पहने आया है भावे तन देते कपड़ा नहीं नगन फिरत रंग एक के ओ शोभा पाए पाठ पटंबर बिरथया जय रच लो भाए। रिम रेशमी कपड़े पाके जो तन दी नुमाइश कर रहा है नगन है पर नगन रह के जो एक दी याद विच लीन है ढके होया है कजे होया पड़दे विच है तो साहब कहने नच दुर्लभंग भोजनंग मिंजनंग नच दुर्लभंग स्वच्छ अंबरे। इस तो बाद मनुख ने जिस नु दुर्लभ समझे ते जीवन उसका जिस दे आले दुआले परिक्रमा करता रहा है वह है नच दुर्लभंग सुत मित्र भ्रात बांधवे नच दुर्लभंग बनिता बिलासे। भागशाली उस मनिया जाता है जिसके बच्चे होवन बिरा होवन पैणा होवन और पत्नी होवे। हम ख्याल पति हम ख्याल पत्नी बच्चे हवन परा हवन सनबंदी हवन साहब कहने वड्या भागां दी ए निशानी नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ते साफ कहने बड़ भागी कहे जन को जानो जो प्रभ के गुण गावे। ईश्वर दे गीत गाण वाला ही वडभागी है। साहब कहने नच दुर्लभं सुत मित्र भ्रात बांधवे ये कोई दुर्लभ नहीं है। चंगे मित्रां दा मिल जाना आज्ञाकारी पुत्रां दा मिल जाना हमदर्द भरावां दा मिल जाना नच दुर्लभंग बनता बिलासे स्त्री तो प्राप्त सुख ये भी कोई दुर्लभ नहीं है। अगर सब कुछ भी प्राप्त हो जाए तो लक्ष्यहीन जिंदगी फिर भी भटकती रहती है। हम ख्याल पत्नी मौजूद है पर हृदय च दुख भी मौजूद है। भरा दे रूप बावा मौजूद ने पर बेसहारा जिंदगी भी खड़ी है। पुत्र आज्ञाकार मौजूद ने पर मन विच गुलामी दे भाव भी मौजूद ने। हमदर्द मित्र सामने खड़े ने पर बेसहारा जिंदगी भी सामने दिखाई दे रही है और ये सब कुछ दे होंदे आया बेसहारा है। मित्र भी है गए ने पुत्र भी है गए ने पत्नी भी हैगी है भरा भी हैगी है लेकिन फिर भी जीवन विच एक खला है। इस वास्ते साहब कहंदे ने इस खला की पूर्ति भरा नहीं कर सकते मित्र नहीं कर सकते पुत्र नहीं कर सकते और पत्नी नहीं कर सकती। नच दुर्लभंग सुत मित्र भ्रात बांधवे नच दुर्लभंग बनता बिलासे। इस तो बाद अगर मनुख प्रभावित है तो वह ज्ञान तो प्रभावित है विद्या तो प्रभावित है। आद काल तो विद्वाना नु बड़िया बड़िया उपाधियां मिलदियां रही डिग्रियां मिलदियां रही और विद्वाना नु सन्मानित किया जाता रहा पर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज से कमाल कर देने आप कहते ने नच दुर्लभंग विद्या परवीणं नच दुर्लभंग चतुर चंचले। विद्या दे प्रवीण हो जाना विख्यात हो जाना और चोटी का विद्वान हो जाना और चातुर हो जाना हाजिर जवाब हो जाना हर प्रश्न का उत्तर मौजूद होवे हर सवाल का जवाब मौजूद होवे हर पक्ष का सवाल चाहे वह सवाल कला के संबंध च होवे चाहे वह सवाल विज्ञान के संबंध च होवे चाहे वह सवाल धर्म के संबंध च होवे इहदे कोल जवाब मौजूद हो ए हर तरह का विद्या विच प्रवीण होवे कोई ऐसा सवाल ना होवे जिसका कि यह जवाब ना दे सकदा होवे। तो साहिब कहिंदे इस तरह का विद्या विच प्रवीण हो जाना भी कोई दुर्लभ नहीं है। नच दुर्लभंग विद्या प्रवीणं नच दुर्लभंग चतुर चंचले। हैरानगी होवेगी अगर ये सब कुछ दुर्लभ नहीं है और जिंदगी का लक्ष्य नहीं है तो फिर जीवन का लक्ष्य की है। अगर धन भी जीवन का लक्ष्य नहीं रूप भी जीवन का लक्ष्य नहीं राजनीति भी जीवन का लक्ष्य नहीं खान पान पैरान भी जिंदगी का लक्ष्य नहीं है और धियां पुत्र संबंधी भरा बहना पत्नी ही जिंदगी का लक्ष्य नहीं चोटी का विद्वान हो जाना विद्या विच प्रवीण हो जाना जे ए भी जिंदगी का लक्ष्य नहीं रस्ते दे पड़ाव ने तो फिर लक्ष्य की है। इस श्लोक की अखीरली पंक्ति विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने दुर्लभं एक भगवान नामे नानक लभदे साध संग कृपा प्रभं। दुर्लभ है केवल एक परमात्मा का नाम लभदा है गुरु दी संग देचो प्रभु दी कृपा दा सदका सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज इस नु एक होर शब्द विच इंज भी बयान करदे ने अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। मुर्दा चाहे करोड़ापति होवे सताधारी होवे आखिर घरों कढ़ना ही पड़ेगा, घर ले विच उस दे कोई थां नहीं। चाहे वो अरबापति है, चाहे सैनिका है, चाहे सताधारी है, चाहे चोटी का खूबसूरत है, चाहे चोटी का गुणवान सी, घर विच उस लई कोई थां नहीं। इस वास्ते कहिंदे ने किसी भी इतनी बेइज्जती नहीं आउंदी जितनी मुर्दे की आउंदी। काढ़ो काढ़ो हई कढ़ो घरों घर चो कढ़ो, ये गल वखरी है चलो रोंदे हो कढ़ो पर कढ़ो। घर विच जगह नहीं है जिसन घर विच नहीं रख सकते और सारे सोचन कढ़ो उस तो वड्डी होर बेअदबी की होगी। बेइज्जती का प्रतीक है मुर्दा। साहिब कहिंदे अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवान। परमात्मा दा प्यार हिरदे च नहीं, ये खूबसूरत मुर्दा है, ये धनवान भी मुर्दा है, ये चतुर चंचल भी मुर्दा है, ये विद्वान भी मुर्दा है, ये मुर्दे की तरह। इसके लिए कोई थां नहीं है संसार विच, इसके लिए कोई थां नहीं है निरंकार दे दरबार विच। दुर्लभ वस्तु है केवल परमात्मा दा नाम, दुर्लभं एक भगवान नामे नानक लभदियं साध संग कृपा प्रभंग। पूरा श्लोक इस तरीके नाल है, नच दुर्लभं धनं रूपं नच दुर्लभं स्वर्ग राजने नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं नच दुर्लभं स्वच्छ अम्बरे नच दुर्लभं सुत मित्र भ्रात बांधवे नच दुर्लभं बनता दिलासे नच दुर्लभं विद्या प्रवीणं नच दुर्लभं चतुर चंचले। दुर्लभं एक भगवान नामे नानक लभदियं साध संग कृपा प्रभं।
1: केलबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित कीता जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3074 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3075।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

पूर्ण पूर रहे दयाल। वाहिगुरु जी आप दया मेर करके हर कट विच पूर्णता रखी बैठे हन। सब ऊपर होवत कृपाल, ओ सब ते कृपालु हन, दया मेर करन वाले हन। अपने कर्तव जाने आप ही प्रभु अपने कर्तवानु जानदा है। अंतरयामी रहो व्याप, वाहिगुरु जी आप अंतरयामी हन, ते सब थाई व्यापक हन। प्रतपाले जीयन बहु पात, बहु पात तरीकियां दे जीयां नु बना के उना दी प्रतपालना भी आप कर दे हन। जो जो रचियो सो तिसे तिहात, जैसे जैसे जीव बनाए ने जिया अंदर, वाहिगुरु जी आप ही उना दी प्रतपालना कर रहे हन। जिस भाव है तिस लय मिलाए, भगत करें हर के गुण गाए। जिससे वाहिगुरु दया मेर कर दे ने उन नाम दी दात बख्श के अपने नाल मेल लेंदे हन। जिस भाव है तिस लय मिलाए, भगत करें हर के गुण गाए। जिससे दया मेर कर दे हन उनु भक्ति दा गुण बख्शदे हन, ते ओ वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जी दा नाम जपदे हन। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करण हार नानक इक जानिया। जिन्ना भगता ने जिन्ना गुरसिखा ने प्रतीत कीती है वाहिगुरु जी दे नाम ते, उना ने गुरु साहिब फरमाउंदे ने वाहिगुरु जी दा करता पुरुष जो एक स्वरूप है, प्यारा स्वरूप है, उना भगता ने जान लिया है, पछाण लिया है।

सुन उपदेश हृदय बसाओ, मन इच्छे नानक फल पाओ। साध संग मिल करो विचार, सतगुरां दी संगत विच आके इस विचार नो मन विच धारण करो। गुण गावो प्रभ परम आनंद, आनंद दी प्राप्ति लई ते फिर वाहिगुरु जी दी प्राप्ति लई वाहिगुरु जी दे नाम दा सिमरन करो। राम नाम तत करो विचार, वाहिगुरु जी दा नाम ही सत है, इसी विचार नो दृढ़ करके अपने मन विच रखो। दुर्लभ देखा करो उधार, ए मनुष्य देही जो अमोलक मिली है ता जो इसका उधार हो जावे। अमृत वचन हर के गुण गाओ, सतगुरां दा अमृत रूपी वचन मन के ही वाहिगुरु नाम जपो जी। प्राण तरण का एह सवाओ, मुक्त होण दा यही एक मार्ग भगती मार्ग ही प्रेमा भगती द्वारा ही इको एक साधन है। आठ पैर प्रभ पेखो मेरा, अठो पैर स्वास स्वास वाहिगुरु जी नु अपने कोले समझो। दुकारण परनासी दयालन स्वरूप है, सदा अंग संगं अवंगं विभूत है। मिटे अज्ञान बिनसै अंधेरा, मन चो अज्ञानता दूर हो जावे ता मन विच चानना हो जावे। मन नु छुटे स्वरूप अपने आत्मा दा ज्ञान हो जावे। सुन उपदेश हृदय बसावो, सतगुरां दा अमृतमई वचन सुन के मनन करो भाई, ते वाहिगुरु जी दा नाम जपो। मन इच्छे नानक फल पावो, गुरु साहिब फरमाउंदे ने जिन्हां सेवकां ने दासां ने सतगुरां दा वचन मन के वाहिगुरु नाम जपिया है उन्हां दीआं मन दीआं इच्छावां पूरियां होईआं हन। हालत पलत दो

हलत पलत दोए लेओ सवार, राम नाम अंतर उर्धार। गुरु साहिब फरमाउंदे ने राम नाम उर में गयो, जाके सामने कोई जे सिमरत संकट मिट।

दूर कहां को जाए। हे जीव तो वाहिगुरु नु क्यों वसारदा है। वाहिगुरु सर्व व्यापक न, तू उना नु विसार नहीं सकदा है। उबरै राखण हार ते आए, जिन्हां ने वाहिगुरु नु ध्यान विच लिआंदा है, जिन्हां ने वाहिगुरु जी का सिमरन कीता है, ओ भव सागर तो उबर गए हन, पार उतर गए हन। निरपाओ जपै सगल भाव मिटै, मन भय विच रहिंदा है। देही दा भय है, विचारां दा भय है, मौत दा भय है, माया दा भय है। वाहिगुरु नाम जपिया मन भय तो रहित हो जांदा है। निरपाओ जपै सगल भाव मिटै, प्रभ कृपा से प्राणी छुटै। वाहिगुरु की कृपा नाल वाहिगुरु जी का नाम जपिया प्राणी देही तो मुक्त होके परम गति नु प्राप्त हो जांदा है। जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। जिसका राखा वाहिगुरु आप होवे, जिस ते वाहिगुरु जी आप मेहरबान होण, ओ बच्चा नाम जपदा है ते उसनु मन करके अत्यंत सुख मिलदा है। चिंता जाए मिटे अंकार, मन चिंतावां तो मुक्त हो जांदा है ते अंतो गतवा दुबदा तो रहित होके अपने स्वय स्वरूप स्थित होके परम सुखी हो जांदा है। इस जन को कोई ना पहुंचन हार, जो चिंता मुक्त हो जावे, जो दुबदा मिटा के वाहिगुरु दे स्वरूप स्थित हो जावे। गुरुदेव फरमाउंदे ने ए प्राणी ए सेवक वाहिगुरु की कृपा नाल इतना उच्चा हो जांदा है कि कोई फिर इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा। जिसका राखा गुरु नानक आप होवे, जिसका प्रतिपालक सतगुरु नानक साहब होवे, जो बच्चा सेवक बन के सिख बन के गुरु गोद विच बैठा होवे, गुरु नानक दे आसरे ते होवे, नानक ताके कारज पूरा। वाहिगुरु की कृपा नाल धन गुरु नानक साहब की दया दृष्टि नाल उस बच्चे दे सारे ही कार्य संपूर्ण हो जांदे हन। मत पूरी अमृत जान की दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत

संत जना का पेखण सब ब्रह्म, गुरु दे प्यारियां दा वेखना द्रिब दृष्टि वाला हो जांदा है। ओ हर जगह ते वाहिगुरु जी नूं ही वेखदे हन। संत जना के हिरदे सब धर्म, धर्मां दा वड्डा धर्म वाहिगुरु जी आप ही संतां दे हिरदे विच समाया होया है। संत जना सुने शुभ वचन, गुरु प्यारे गुरमुख ही शुभ वचन बोलदे हन ते सुनदे हन। सर्व व्यापी राम संग रचन, सर्व व्यापक जो प्रभु है उस दे नाल रचे हुए हन। जिन जाता तिसकी ए रहत, सत बचन साधु सब कैत। जिन वाहिगुरु नू जान लिया पछाण लिया, उना दी रहनी उची हो गई है। सत बचन साधु सब कैत, सब साधु जना ने गुरमुखा प्यारिया ने वाहिगुरु जी नू सत ही मनिया है। जो जो होए सोई सुख माने, करण करावण हार प्रभ जाने। जिथे प्रभु ने रखिया है उथे ही ओना रहन विच सुख मनिया है। करण करावण हार प्रभ जाने, कीता वाहिगुरु दा हुंदा है, इसलिए वाहिगुरु दा कीता होया उन्हां गुरमुखा ने सत करके मनिया है। अंतर बसे बाहर भी ओही, नानक दर्शन देत सब मोही। गुरु साहिब फरमाउंदे ने मन दे अंदर भी वाहिगुरु जी वसदे ने, मन दे बाहर भी वाहिगुरु जी वसदे ने। हर जगह हर थाओ वाहिगुरु जी आप ही समाये हुए ने। वाहिगुरु जी दे इस दर्शन ने सारे जगत नू मोया होया है।

अंतर्गत जिस आप जनाए नानक इस जन आप बुझाए आप सत किया सब सत वाहिगुरु जी आप सच हन ते उना दा कीता होया कर्म भी सब सच ही है इस प्रभते सगले उत्पत वाहिगुरु जी ने जो बनाया है वो सत ही बनाया है जिस भावे ता करे विस्तार जिस भावे ता एकंकार वाहिगुरु जी आप अपनी मौज विच ही अपने रस विच ही एक तो अनेक हुंदे हन ते जदों ओ आप चाहुंदे हन अनेक तो फिर एक रस होके विचरदे हन अनक कला लखी ना जाए जिस भावे तिस लय मलाए वाहिगुरु जी सर्व शक्तिमान ने उना दे गुण लखे नहीं जांदे हन पर जिस ते ओ आप कृपा कर देन उस नु गुरुदेव दी कृपा नाल वाहिगुरु दे नाम दी सोझी हो जांदी है कावन निकट कावन कहिए दूर आपे आप भरपूर जदों वाहिगुरु जी सारियां कटां विच आप ही परिपूर्ण हन तां वाहिगुरु दे कौन नेड़े है ते कौन दूर है किवें कह सकदे हां अंतरगत जिस आप जनाए मन दी अख खोलदे हन जदों सुत्ता होया मन जागदा है जदों वाहिगुरु दे नाम दे अभ्यास नाल एक कृपा जदों वाहिगुरु आप करदे हन उदों ही वाहिगुरु जी दा दर्शन हुंदा है नानक तिस जन आप बुझाए गुरु साहिब फरमाउंदे ने वाहिगुरु आप ही अपनी कृपा दृष्टि नाल द्रिभ दृष्टि देखदे हन जिस कारण जीव वाहिगुरु जी दा

सर्वपूत आप वर्तारा तिन काल वाहिगुरु जी आप ही वर्तन हारे हन ते पूर्ण रूप होके सब जिया विच समाये हुए हन। सर्व नैन आप पेखन हारा सारिया जिया दे अखा विच वाहिगुरु जी आप ही वेखदे हन। सगल समगरी जा का तना आम सब कुछ जो वाहिगुरु जी ने बनाया है ए उना दा अपना मिठा आकार है। आपन जस आप ही सुना वाहिगुरु नाम दा जस वाहिगुरु जी आप ही करदे ने ते आप ही सुनदे ने। आवन जान एक खेल बनाया जीव दा आउना ते जाना जन्मना ते मरना एक तमाशा बनाया है एक कौतक कीता है। आज्ञाकारी कीनी माया माया बना के तिन्ना गुणा विच जीव दा आउना जाना कीता है। सबके मद अलिप तो रहे सारिया दे विच वाहिगुरु जी रहिंदे ने पर आप माया तो निर्लेप रहिंदे ने। जो किछ कहना सो आपे कहे जिया विच जो कहना चाहुंदे ने ओ आप ही कहाउंदे ने। आग्या आवे आग्या जाए जीव वाहिगुरु जी दी आग्या विच आउंदा है ते अपनी आग्या विच ही ओ वाहिगुरु विच समा जांदा है। नानक जा पावे तां ले समाए जदों वाहिगुरु जी आप किरपा करदे ने तां जीव नूं अपने स्वाय स्वरूप आत्मा विच स्थित करके अपने स्वरूप विच लीन कर देंदे हन। इससे होए सो नाहीं बुरा और कहो किने कछु करा

आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जान कौ सदा नमस्कार। जो जाने तिस सदा सुख होए। जिन्ना गुर सिखा ने वाहिगुरु दे हुक्म नु जान लिया है पछाण लिया है उना नु सदीवी सुख होया है। आप मिलाए लए प्रभ सोए। उना गुरु के प्यारियां नु वाहिगुरु ने आप ही अपने नाल मिला लिया है। ओ तनवंत कुलवंत पतवंत। वाहिगुरु जी दा दर्शन पाके वाहिगुरु जी दे विच एकमेक होके ओ धन वाले हो गए ने अच्छी कुल वाले हो गए ने ते सोहनी शोभा वाले पतवंते हो गए ने। जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। जीवदियां ही मुक्ति नु प्राप्त कर लिया है जिन्ना दे हृदय च वाहिगुरु जी वस गए हन। तन तन तन जन आया। इहो जे गुरमुख प्यारे मनुष्य जन विच जदों आउंदे ने नाम जप के उना दा जीवन धनता योग हो जांदा है। जिस प्रसाद सब जगत तराया। उना दे आउन दा इत्थे फायदा ए हुंदा है कि उना दी संगत विच गुणहीन जीवां दा भी उधार हो जांदा है। जन आवन का एह सुआओ। जन के संग चित आवे नाओ। इहो जे गुरु प्यारियां दा हर हर जन दो एक है बि विचार किछ नाहे। जल ते उपर तरंग ज्यों जल ही विखे समाए। वाहिगुरु दे प्यारियां दा मनुष्य जन विच आउन दा फायदा ए हुंदा है कि उना दी संगत विच जड़े प्राणी आउंदे ने उना दे चित विच वाहिगुरु दा नाम वस जांदा है। आप मुक्त मुक्त करे संसार। आप ते ओ मुक्त होए होए हुंदे हन ते उना दी संगत विच जड़े रहिंदे ने ओ भी मुक्त हो जांदे ने। नानक तिस जन कौ सदा नमस्कार। गुरदेव फरमाउंदे ने एहा जे गुरु प्यारियां नूं जो आप जपदे ने अवरा नाम जपाउंदे ने उना नूं नमन करो। उना तो सदके सदके जाओ। उना तो बलहार

गुर सेवा ते भगत कमाई तब ए मानस देही पाई इस देही को सिमरें देव सो देही पज हर की सेव पजो गोविंद भूल मत जाहो मानस जन्म का एही लाओ। गुरु अर्जन साहिब महाराज फरमाउंदे ने भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोविंद मिरन की एहे तेरी बरिया अवर काज करे किसी ना काम मिल साध संगत फज केवल नाम। मनुख चोला वाहिगुरु नाम जपण वास्ते मिलिया है मनुख जीवन विच भी वाहिगुरु दा दर्शन हो सकता है। मनुख वाहिगुरु जी दा नाम सतगुरु दी आग्या विच जप सकता है सतगुरु दी रहनी विच रह के जप सकता है। जदों इस मन ने सतगुरु दी आग्या विच रह के वाहिगुरु जी दा नाम जपिया इस सतगुरां दी कृपा नाल पूर्ण वाहिगुरु दे इस समर्पित हो गया ते वाहिगुरु जी दा दर्शन हो गया सतगुरां दी मेहर नाल पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जपो जी।

पूर्ण सतगुरु का उपदेश पूर्ण है। जिन्हां गुरसिखा ने सुनिया ते मन के कमाई की, वाहिगुरु जी का नाम जपया, सतगुरां की कृपा नाल वाहिगुरु जी की दया मेर नाल उन्हां गुरमुखां ने वाहिगुरु जी नूं अपने कोले पाया, अपने निकट पाया, अपने मन दे अंदरों ही प्राप्त कर लिया है। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म

करो अपना आप गवा के निमाने होके मन की गरीबी धारण करके जो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम जपीदा है ते गुरमुखा की संगत विच रह के वाहिगुरु नाम जपिया अग्नि जैसा सागर जो पार उतरना बहुत मुश्किल है पार उतर जाईदा है। हर तन के पार लियो पंडार वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम जप के वाहिगुरु नाम तनु एकत्र कर लवो जदों शरीर छड़ के कल्या जाना पेगा जे मार्ग जात अकेला ते हरि नाम संग हो सुहेला उथे वाहिगुरु नाम ही सुखदाई होवेगा। हर तन के पार लियो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार अपने सतगुरां नाल प्यार रखना अपने सतगुरां दे चरणां च मुक जाना अपने सतगुरां तो सदके जाना बलहार जाना सतगुरां दे प्यार नाल वचन सुनना।

धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज गिनती करदे ने, नथ दुर्लभं धनं रूपं नथ दुर्लभं स्वर्ग राजने। पहली पंक्तियां देख तीन वस्तुओं का जिक्र किया है, धन, जोबन ते प्रभुता, राजनीति। मनुख दौड़ रहे है, भज रहे है, खूब दौड़ रहे है, खूब भज रहे है और पीढ़ी दर पीढ़ी भज रहे है। किसने ही भज रहा है, दौड़ रहा है, इसकी मंजिल की है? इसकी मंजिल है धन, इसकी मंजिल है जोबन, इसकी मंजिल है कुर्सी, प्रभुता। सारे राजनीतिकां दी दौड़ कुर्सी तक है, हर बशर दी दौड़ जोबन तक है, हर मनुख दी भज धन तक है। तो इस तरीके नाल मनुख ने धन नूं, जोबन नूं ते प्रभुता नूं अहम मन लिया, दुर्लभ मन लिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने अनुभव के आधार से फरमान कर रहे ने, नच दुर्लभं धनं रूपं, नच दुर्लभं स्वर्ग राजने। धन ते रूप ते प्रभुता राजनीति कोई दुर्लभ नहीं है। ये ठीक है कि धन तो बिना जीना औखा है, पर सिर्फ धन ही मंजिल समझ लेना, धन ही मरकज समझ लेना, केंद्र समझ लेना और उसके आले दुआले जीवन भर परिक्रमा करनी, ये जीवन नू बर्बाद करना है। फिर जितना धन का मुल है उतना मुल भी इस जीवन का नहीं है, इस जिंदगी का नहीं है। सवाल ये है, जीवन धन लई है या धन जीवन लई है? पर अक्सर ऐसा है कि मनुख ने सोच लिया जीवन धन लई है। इस वास्ते एक कहावत प्रचलित है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, जान जाती है तो जावे, धन नहीं जाना चाहिए। जिंदगी जाती है तो जावे, पर पदार्थ ए धन नहीं जाने चाहिए। जीवन में भी मनुख दाव ते ला देंदा है धन की खातर, जिंदगी में भी कुर्बान कर देंदा है मनुख धन की खातर, क्योंकि इस नू अपनी मंजिल समझ लेंदा है ते मनुख दे मन दे ते ज्यादा प्रभाव भी धन दा है। असी देखने हां कि आम समुचे जगत विच किसे दी महिमा है तो धन करके गुरबाणी भी ऐसा प्रमाण करती है कि वास्तविक जिहड़ी वड्याई है ए मनुख दी नहीं, ए को ना वड़ा माया वड्याई, कोई वड्डा नहीं है। इत माया करके धन करके सारे उसनु वड्डा वड्डा कह रहे ने, आदर दे रहे ने, सम्मान दे रहे ने। भगत कबीर जी कहंदे ने, निर्धन आदर को न दे, लाख जतन करे उचित न धरे। निर्धन दा हर महफिल दे तिस्कार है, सत्कार नहीं। जो निर्धन सरधन के जाए, वास्तविक ऐसा है, अगर किधरे धनवान निर्धन दे घर आवे, निर्धन आदर सत्कार नाल उसनु जो है बिठांदा है। जो सरधन निर्धन के जाए, दिया आदर लिया बुलाए, पर जो निर्धन सरधन के जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। उसे पीठ करके बैठ जाता है, उसे गलबात भी करने तैयार नहीं, क्यों? इसकी जेब दे चार कौड़ियां नहीं है, ये धनवान नहीं है। तो अक्सर जगत विच देखांगे सत्कार धन दा है, प्रभुता दा है, जोबन दा है, मनुखता दा कोई सत्कार नहीं, मनुख दा कोई मान नहीं। अगर कोई मनुख किसी मनुख दा सम्मान कर रहा है, दरसले भुलेखा है, किसी भी मनुख दा सम्मान नहीं है, ये धन दा सम्मान हो रहा है, जोबन दा सम्मान हो रहा है, प्रभुता दा सम्मान हो रहा है। भगत कबीर कहंदे ने, निर्धन सरधन दोनों भाई, प्रभु की कला न मेटी जाई। और आप अपने अनुभव के आधार से कहंदे ने, कहो कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। वास्तविक उसनु निर्धन गिन लो जिसके अंदर

0: ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਨਵਾਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰ ਧਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਧਨ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਦੁਰਲਭ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇਹ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ, ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਅਸਮਤ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੈ, ਧਨ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਧਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਧਰਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਰਿਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੁਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਿਆਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੈਰਾਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੁਰਲਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਨ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਤੋ ਸਿਰਫ ਧਨਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਸਾ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਸਾਧੂ, ਹਰ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ, ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ੀ, ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਮੁਨੀ। ਅੱਜ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਧਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵੀ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਧਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਧਨੰ ਰੂਪੰ। ਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਸਦੀ ਜੇਬ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸਦਾ ਘਰ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੂਪ ਤੋਂ, ਸੁਹੱਪਣ ਤੋਂ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੋਂ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਾਠ ਪਠਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਧਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਜੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰੂਪ ਦਾ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਪਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋਹੇ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੂੰ ਮਦਮਸਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸੰਜਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਦਇਆ ਮੈਤਰੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲਾਏ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵਪਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਧਨ ਕਰਕੇ, ਰੂਪ ਕਰਕੇ। ਸਿਰਫ ਰੂਪ ਦਾ ਹੀ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਅਜੋਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਇਸੇ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਚਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਕਵੀ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲੋਸਫਰ, ਇਸ ਵੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 99% ਉਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਰੂਪ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਘਾਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਰੂਪਵਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਇਤਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਕਵੀ ਬਣਨ ਲਈ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਹਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਗਿਆਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦੀ। ਰੂਪਵੰਤ ਨੂੰ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੂਪ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੋੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਪ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਪਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ। ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਧਨੰ ਰੂਪੰ ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜਨੇ। ਧਨ ਤੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅਖਬਾਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ, 90 ਸਦੀ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਆਪਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ ਧਨ ਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ ਰੂਪ ਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਰਾਜਨੀਤੀ, ਧਨ ਤੇ ਰੂਪ। ਮਾਨੋ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਧਨ ਤੇ ਰੂਪ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਜਨੀਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਧਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਨ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੂਪਵਾਨ ਨਹੀਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੂਪ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੂਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੂਜ ਹੋ ਗਈ, ਧਨ ਪੂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੂਪ ਪੂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਉਹ ਆਰੋਪ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਜ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਪੂਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਪੂਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਇਹ ਧਨ ਤੇ ਰੂਪ ਤੇ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਛਾਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਛਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਮਨੁੱਖ ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ, ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਧਨੰ ਰੂਪੰ ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜਨੇ। ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੁਸਨ ਨਾਦਾਨੋਂ ਕੋ ਬਖਸ਼ਾ, ਜ਼ਰ ਜ਼ਲੀਲੋਂ ਕੋ, ਅਕਲਮੰਦੋਂ ਕੋ ਰੋਟੀ ਖੁਸ਼ਕ ਔਰ ਹਲਵਾ ਬਕੀਲੋਂ ਕੋ। ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਹੀ, ਜ਼ਲੀਲ ਲੋਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਰਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਧਨ ਜੜ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਜੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧਨ ਜੜ ਹੈ, ਠੋਸ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਠੋਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਧਨ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੂਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਤਨਾ ਠੋਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਥਰ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸਖਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਸਖਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਠੋਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਠੋਸ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਗਏ? ਜੋ ਧਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਰੂਪ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ। ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਨ ਦਾਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੌਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੈਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਲਕਣ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਵਾਗਨ ਹੈ ਅਤ ਸੁੰਦਰੀ ਪਗ ਨੇਵਰ ਛਣਕ ਛਣ ਹਰੀ। सुहागन किरपन की पोती, सेवक तज जगत संसोती। सुहागन माया नु आखे, धन नु आखे, और माया नु धन नु सदा सुहागन आखे। रंडी कदी नहीं आउंदी, क्यों? खसम मरे तो नार न रोवे, उस रखवारो और ही होवे। धन दा मालिक मर जाए तो उस माया दा रखवाला उस वक्त पैदा हो जांदा, जिस वक्त जिहड़ा मरे है उस वक्त दूजा रखवाला हो गया। तो रंडी नहीं होंदी माया, रंडी नहीं होंदी, बेवा नहीं होंदी। बकौले भगत कबीर, खसम मरे तो नार न रोवे। मालिक मर जाए, खसम मर जाए, नारी नहीं रोंदी, इस्त्री नहीं रोंदी। क्यों? उस रखवारो और ही होवे, उदा रखवाला उस वक्त पैदा हो जांदा है, पुत्र पैदा हो जांदा है। पोतरा रखवाला हो गया, भरा रखवाला हो गया, मां बाप रखवाले हो गए ने, कोई भी नहीं कि सरकार हुकूमत रखवाली है। धन कदी बेआसरा नहीं होंदा, माया कदी बेवा नहीं होंदी। इस वास्ते विद्वानों ने कहा है कि ते सदा सुहागण है, कोई ना कोई इसका रखवाला हो जांदा है, कोई ना कोई इसकी परिक्रमा करता ही रहता है। ये खाली नहीं, सुहागन है अत सुंदरी। भगत कबीर कहते ने इस संसारियों लई अति सुंदर है, बहुत सुंदर है, और संसारी मनुखों की परिक्रमा इसे सुंदरी के आले दुआले। इस सुंदरी दे अगों कबीर तीन रूप पेश करते ने, सुहागन किरपन की पोती। ये जो सदा सुहागन है, ये सूं बंदे की धी है, इन्हें छुपा के रखता है। जैसे प्राचीन समाज ते अजो का कुछ थोड़ा जिहा समाज जवान बच्चे नूं पढ़दे च रखदे ने, छुपा के रखदे ने, हिफाजत दे जहर रखदे ने, ताकि इसकी इज्जत बरकरार रहे और इस दासी कोई घर ढंग नाल लग सकी। छुपा के रखता है, सूम हमेशा धन नो छुपा के रखता है। अपने बच्चियां तो भी, मां बाप तो, बरा तो, कई दफा पत्नी तो भी, और गुरबाणी ऐसा कहती सब कुछ तो छुपा के रखता है। क्यों? ये उसकी बच्ची है, ये केवल उसकी पुत्री है। ऐसा एक प्रत्यक्ष रूप भी मेरे देखने दे आया, किसी घराने एक पत्नी ने सवाल कह दिता मैनू कि मेरे इस सरताज पति का स्वभाव सारिया नाल चंगा है, बर्ताव सारिया नाल चंगा है, लेकिन अपने परिवार नाल चंगा नहीं, बच्चियां नाल चंगा नहीं, मेरे नाल चंगा नहीं। एकांत विच मैं पूछया, ऐसा क्यों? थोड़ा वर्ताव हर एक नाल चंगा है। मैनू कहण लगे, गैनी जी, साडी राजनीति है, थोड़े जिहा घर विच खुल जाइए तो बच्चे लंबी चौड़ी लिस्ट पेश कर देंदे ने, ऐ चाहीदा है, ऐ चाहीदा है, ओ चाहीदा है। ते पत्नी भी लंबी चौड़ी लिस्ट पेश कर देंदी है, मैं खून पसीना एक करके धन कमाया है तो इन्हां दे हवाले कर दिया। इस वास्ते मैं आकड़ के रहना, चिड़ के रहना, दबाव बनाई रखना ताकि सारे डरे रहन ते दूर रहन। दरअसल वाकई सियाणा मनुख चाहुंदा है मेरी बच्ची छुपी रहे, एक पासे रहे, जने खने की निगाह दे थले ना होवे। सोम मनुख धन नो अपनी बच्चियां तो भी बचा के रखेगा, अपनी पत्नी तो भी ओझल रखेगा, अपने मां बाप तो भी ओझल रखेगा, और धन की खातर मां बाप कुर्बान कर देगा, वो धन की खातर बच्चियों नूं भी कुर्बान कर देगा, और धन की खातर वो पत्नी के रिश्ते विच भी दराड़ खड़ी कर देगा। क्योंकि दुर्लभ धन है, दुर्लभ पत्नी नहीं है, दुर्लभ धन है, दुर्लभ बच्चे नहीं है, दुर्लभ धन है, दुर्लभ मां बाप नहीं है, दुर्लभ धन है, दुर्लभ परमात्मा नहीं है। सूम बंदा भगत ते हो ही नहीं सकता, क्योंकि सूम मनुख का दायरा बहुत तंग हो जाता है जब भगत का हिरदा बहुत विशाल होता है, या भगती उदो ही प्राप्त होती है जब किसी का हिरदा बहुत विशाल हो जाए, बहुत खुला हो जाए, सारा संसार उसनु अपना दिखाई देवे, पर सूम मनुख नु ते अपने भी अपने नहीं दिखाई देंदे। اپنے ہی بیگانے دکھائی دیندے نے۔ سہاگن کرپن کی پوتی سیوک تج جگت سن سوتی، جگت دی اے استری ہے، اس تو رس لیندے نے، اس نو ورت دینا۔ کرپن دی سن دی اے دھی ہے، پر جو پرماتما دا سیوک ہے یہ اس دی سیوک ہے، تو اس دی نوکرانی ہے، یہ اس دی داسی ہے۔ انج دھن دے اس طرح مایا دے تین روپ بیان کیتے نے، اے دھی ہے، اے پتنی ہے، اے نوکرانی ہے۔ سنساریاں دی پتنی ہے، سوم دی دھی ہے، بھگتاں دی داسی ہے، انہاں دے پچھے چل دی ہے۔ اور دھن گرو نانک دیو جی مہاراج فرمان کردے نے کہ جیسے منک دے اندر تیاگ دی بھاونا پیدا ہوندی ہے، تیوی مایا اس دی پرکرما کرن لگ پیندی ہے، اس دے جو ہے پچھے چل پیندی ہے۔ ایک اردو دے شاعر دا بھی کہنا ہے، بھاگتی پھرتی تھی دنیا جب طلب کرتے تھے ہم، اب جو نفرت ہم نے کی وہ بے قراراں کو ہے۔ کہو نانک جو تیاگ دئی تب او سرنی آئے گئی۔ نچ دُرلبھم دھنم روپم، نچ دُرلبھم سورگ راجن۔ دھن تے روپ تو باو منک پربھاوت ہے ستا تو، کیونکہ ستا کر کے ہی پربھتا ہے، پربھو ستا ہے۔ اس واسطے بھج دوڑ دا مرکز ستا بن جاندی ہے۔ ستا پراپتی دے طور طریقیاں نوں راجنیتی کہندے نے۔ اگر دھن چھل تے کپٹ نال بےمانی نال پراپت ہوئے تے راجنیتی پربھو ستا ستا سنگھاسن پراپت کرن واسطے شام دام ڈنڈ بھید نوں ورتیا جائے تو اے بھی منک دی آتما نوں تھلے لے جاندا ہے، راجنیتک بہت پستی دے چلا جائے گا، کیونکہ اس دی سوچنی کی ہے دوجیاں نو خریدنا، دوجیاں نو قابو کرنا، دوجیاں نو جکڑنا، دوجیاں نو دبانا، اور اس حد تک دب جان کہ میں انہاں دے سر تے بیٹھ جاواں۔ اس واسطے راجنیتک جتنا کٹھور ہو جائے گا اس دے وپریت اتنا ہی سنت کومل ہے، بھگت کومل ہے۔ دنیا وچ بہت وڈے خون خرابیاں دا کارن راجنیتی ہے، اور جب تک اس طرح دی راجنیتی ساری دنیا چ رہے گی خون خرابے ہوندے رہنے گے۔ راجنیتی دا مطلب یہ ہے، دوسرا اگر سر دے تے بیٹھن دی تھاں نہیں دیندا تو سر مٹا دو، قتل کر دو، سٹ دو۔ اور یہی کارن ہے کہ راجنیتی پھیلی شستروں دے آسرے تھے۔ وہ دیش اتنا سمپن ہو گیا، اتنا مہان ہو گیا جس کل بڑے بھیانک گھاتک شستر ہومن۔ آج وہی شکتی شالی ہے، اس دا ہی سنمان ہے جدی کل ہائیڈروجن بم ہے، میزائل جنے ایٹم بم ہے، دنیا نو ناس کرن لئی جس دے کل جتنا سازو سامان ہے دنیا اتنا ہی سنمان کر لی ہے۔ یہ کیسا منک ہو گیا کہ سنمان اس دا جو دوسرے دا اپمان اس حد تک کر سکتا ہے کہ کیڑے مکوڑیاں دی طرح ایک سیکنڈ وچ پورے شہر نو ختم کر سکتا ہے، کچھ چھناں وچ پورے ملک نو مٹا سکتا ہے۔ سیانے تے اتھے تک کہہ رہے نے کہ اتنے بم ستا دھاریاں کول پئے نے کہ اس پرتھوی نو سات دفعہ مٹایا جا سکتا ہے، سات دفعہ برباد کیتا جا سکتا ہے، جبکہ ایک دفعہ برباد ہون نال ہی برباد ہو جائے گی، پر سات دفعہ نیست و نابود کرن دا سازو سامان منک دے کول اج پراپت ہے، اپلبدھ ہے۔ راجنیتی کھڑی ہے دوجے نو مٹان تے، دوجے نو دبان تے، دوجے نو خریدن تے۔ دوجے نو خریدنا ہے، اگر وکن نو تیار نہیں، دوجے نو دبانا ہے، دبن نو تیار نہیں، دوجے نو مٹانا ہے۔ کہنے نے چنگیز خان ہلاکو بستیاں اجاڑ کے لنگ دے سن، لاشاں دے پنوس دے گھوڑے لنگ دے سن۔ سٹھ لکھ یہودیاں دا قاتل ہے ہٹلر، اور پوری तबाही जेडी उस तो हुई तो कुल 2 करोड़ मनुख उस दे हत्थी कतल होए। गालबन करोड़ा मनुखां नूं मौत दे घाट उतार के रशिया विच क्रांति आई और 2.25 करोड़ मनुखां दी कबरां बना के ही चाइना विच क्रांति आई। शायद इस वास्ते ही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सोचा अगर धन धर्म नाल संबंधित होवे तो धनवान दानी हो सकता है, धर्म नाल रूप संबंधित होवे तो रूपमंद महान वो अरूप जो परमात्मा है उसका पुजारी बन सकता है, और धर्म नाल किधरे राजनीति संबंधित हो जाए तो यह राजनीतिक बहुत वड्डा सेवादार बन सकता है। कौम की सेवा देश की सेवा करने वाला एक बहुत वड्डा सेवादार, पर जे धर्म तो वख कर दईए इस राजनीति नो तो देश का गद्दार बन जाएगा, देश के सिर पे बैठ जाएगा, दबा के रख देगा, मिटा के रख देगा, गुलाम बना के रख देगा, खरीद लवेगा। सारी दुनिया विच धर्महीन राजनीति ने गुलाम पैदा कीते ने, दबे हुए मनुख पैदा कीते ने, या कबरां ही कबरां नूं जन्म दिता है, खून दियां नदियां नूं जो है जन्म दिता है। 20वीं सदी दे हो गुजरे मशहूर और मारूफ शायर जिन्होंने एक बड़ा सुंदर कौमी तराना भी लिखिया सी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। लेकिन इस महापुरुष देवी ए विचार में जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। दीन नूं सियासत तो एक पासे कर दो चंगेज पैदा होंगे, हलाकू पैदा होंगे, दीन नूं राजनीति नाल जोड़ दो तो नौ शेरवान आदल पैदा होंगे, जनक पैदा होंगे, महाराजा रंजीत सिंह पैदा होंगे, और इसे धर्म नूं राजनीति तो वख कर दो तो फिर हिटलर पैदा होंगे, मुसोलिनी पैदा होंगे, चंगेज खान पैदा होंगे, हलाकू पैदा होंगे। बदकिस्मती है आज तक असी पूर्ण तौर से धर्म नूं राजनीति नाल जोड़ नहीं सके, तो जनक ते एक पैदा होया है, हर नाकस बहुत पैदा हो रहा है। असी धर्म नूं व्यापक तौर से राजनीति नाल जोड़ नहीं सके तो राम ते एक पैदा होया, रावणा दी कतार लगी हुई है, पैदा ही होंदे जा रहे हैं, पैदा ही होंदे जा रहे हैं। इसी तरीके दे नाल जिस महापुरुष ने गीता जैसे ब्रह्म ज्ञान नूं राजनीति नाल जोड़िया, इस तरह का कृष्ण ते इक्को ही होया है, पर कंस ते कदम कदम ते मौजूद ने, दुर्योधन ते कदम कदम ते मौजूद ने। सारे सिख इतिहास नूं पढ़ के देखिए तो महाराजा रणजीत सिंह जैसा ते केवल इक्को ही है, जो धर्म की मूर्ति है, दया की मूर्ति है, इंसाफ की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है। लेकिन इसी धर्म नूं राजनीति नाल जोड़न दे ए कौम भी असमर्थ रही है तो फोके छलिया कपटी पैदा हो रहे, दबाण वाले मिटाण वाले पैदा होने, ये भी दूजे नूं खरीदना चाहते ने। सच कह दिता है, सही कह दिता है इकबाल ने, जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। सच्ची राज सत्ता की है, इसनूं कलगीधर दी शान शौकत विच जो सिखां ने उजागर कीता, आकी रहे न कोई, कोई बागी ना होवे, कोई विद्रोही ना होवे, कोई दुखी ना होवे। अगर कोई आकी है, पंजाबी दा ए आकी शब्द इस दे अक्षरी अर्थ करिए तो विद्रोह, इस दे अखरी अर्थ करिए तो बगावत, इस दे अखरी अर्थ करिए तो इंज कह दईए अत्वादी। क्यों आकी रहे ना कोई, साहिब कहंदे ने ऐसी राज सत्ता चाहिए सारी दुनिया विच आकी कोई भी ना होवे, विद्रोही कोई भी ना होवे, बागी कोई ना होवे। कहंदे एथन विच अज तो 2500 साल पहले एक महान संत होया सुकरात, उसने कह दिता ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਸਤਾ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਵਿਦਰੋਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਕਰਾਤ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਬਨਾਵਟੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਔਕੜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਗਲੀ ਗਲੀ ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਦਮ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਆਕੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਸਤਾ ਵਿਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫਲ ਫਰੇਬ ਔਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਜਲਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਜੁਦਾ ਹੋ ਦੀਨ ਸਿਆਸਤ ਸੇ ਤੋ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਜੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਡਾਕੂ ਸਵੈਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਬੇਸਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਬੱਡ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਗਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣ ਤੋ ਫਿਰ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਮਨੁੱਖ ਸਤਾ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਦੁਰਲਭ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਗੁੰਮਦਾ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਰਲਭ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਤਾਧਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਤੇਰੀ ਸਤਾ ਤੋਂ ਜਗਤ ਆਕੀ ਹੋਵੇ ਬਾਗੀ ਹੋਵੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਤਪੋਂ ਰਾਜ ਰਾਜੋਂ ਨਰਕ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜੋ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਧਨੰ ਰੂਪੰ ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋੜ ਅਗਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਰਲਭ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੁਰਲਭ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁਰਲਭ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਦੁਰਲਭ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਭੋਜਨੰ ਵਿੰਜਨੰ ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਸਵੱਛ ਅੰਬਰੇ ਭੋਜਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭੋਜਨ ਪੇਟ ਦੇ ਚੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਭੋਜਨ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਚੋਵੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਵੇ ਭੋਜਨ ਚਿਤਨੀ ਦੇ ਚੋਵੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ ਭੋਜਨ ਪੇਟ ਦੇ ਚ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਹੈ ਸਵਾਦ ਹੈ ਭੋਜਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਚ ਹੈ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਚ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚ ਹੈ ਤੋ ਭੋਜਨ ਰੋਗ ਹੈ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਭੋਜਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਭੋਜਨ ਰਹਿ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਔਰ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਤ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਚਲੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਚਲੇ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਰੱਖੀ ਲੋੜਵੰਦ ਯਾਤਰੂ ਜੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲੇਕਿਨ ਲੰਗਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਪਰ ਭੋਜਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਥਮ ਦਰਜਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਜਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਜਨ ਦੇ ਸਥਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਥਮ ਹੋ ਗਿਆ ਭਜਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ परिक्रमा जो है करती रहती है। लंगर की मर्यादा से भाईचारा पैदा करने लई लंगर की मर्यादा से दूर दूर तो यात्रु आवन ते उन्हानु सुख सुविधा प्राप्त हो सके, उन्हानु आके रोटी पानी बनानी ना पवे लभनी ना पवे ए उन्हानु मयसर होवे ए उन्हानु प्राप्त होवे। बड़ी सोहनी सुचजी मर्यादा धन गुरु नानक देव जी महाराज तो लेके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक चलती रही, हुण भी चल रही है। लेकिन किधरे किधरे देखण नु मिलदा है कि मनुख दियां रुचियां बस लंगर दे आले दुआले परिक्रमा करके रह जांदियां ने, लंगर ना मिले तो दुखी हो जाएगा, पर गुरबाणी सुनण नु नहीं मिली तो दुखी नहीं हुंदा, नाम जपण नु नहीं मिलिया तो दुखी नहीं हुंदा, गुरु दे दर्शन करण नु नहीं मिले तो दुखी नहीं हुंदा। इस तों मुख मुद्दा ही पंगत दा जो है खो जांदा है। तो साहिब कहिंदे भोजन को इतना दुर्लभ नहीं है, घर विच हुण रसोई महान हो गई, बाकी होर कुछ नहीं महान है। किसे वक्त घर घर विच धर्मशाल महान सी, पूजा घर महान सी, अज पूजा घर महान नहीं, अज रसोई महान है, भोजन महान है, सारे परिवार की परिक्रमा रसोई दे आले दुआले, सारे परिवार की परिक्रमा भोजन दे आले दुआले, सारा संसार रोटी दे आले दुआले घूम रहा है, भोजन दे आले दुआले घूम रहा है, और इसे नु दुर्लभ समझ लिया है, जीवन इसे लिए बतीत हो रहा है। सतगुरु देव जी महाराज कह रहे ने नच दुर्लभं भोजनं बिंजनं, ते भोजन तरह तरह का स्वादी 36 प्रकार का ए बिंजन महाराज कहने इतना दुर्लभ नहीं कि तू अपना जीवन इसे लिए बतीत करे। उदयपुर का महाराजा जद राजयोगी भर्तरी नु मिले जंगल विच, उस वक्त राजयोगी भर्तरी सत्तू पानी विच घोल के पी रहे सन। उदयपुर का यह महाराणा भर्तरी नु कहंदा है राज पाठ त्याग के इस तरह के योगी बन के फिक्के सत्तू खाने शोभा नहीं देंदे, तुसी राजा हो आओ साडे महलां विच। तो भर्तरी कहने वैराग शतक दे कीमती बोल ने मैं प्रसीद सत्तू सा गा दे तू प्रसन्न बिंजन बहु स्वादे, जितना स्वाद तू 36 प्रकार दे भोजन तो मानना है इतना ही रस मैं सत्तू तो ले लेना, तू बिना भुख दे खाना मैं भुख लगदी है ता खाना, तेनू स्वाद प्रेरदे ने तू खाना है मैनू भुख प्रेरदी है ते मैं खाना, हुण तेनू कौन दसे स्वाद ते भुख दे चे, उस भुख करके जब मैं सत्तू खाना तो यकीन जान तेरे 36 प्रकार दे भोजन भी फिक्के ने बेमैनी ने कुछ भी नहीं। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी फरमान करदे ने रुपे कामे दोस्ती भुखे सादे गंड, वास्तविक स्वाद भोजन विच नहीं है भुख विच है, और भुख करके जो खाउंदा है एक एक बुरती अमृत है, एक एक निवाला अमृत है, पर स्वाद करके जो खांदा है एक एक बुरकी रोग है, एक एक बुरकी बीमारी है। इंज कह लो इस सदी विच भोजन दा रोग बहुत वधे है, बहुत वधे है, भोजन तो बीमारियां बहुत वधियां ने। आयुर्वेद ते आदि काल तो मंदा रहा है कि 90% बीमारियां आहारक ने, प्राकृतिक नियम दे मुताबिक आहार नहीं है, संतुलित आहार नहीं है, और भुख करके मनुख नहीं खा रहा, इस कारण करके भोजन तो अनंत रोग जन्म ले रहे ने, और भोजन रोग ले नहीं है, भोजन ते जीवन ले है, भोजन ते तंदुरुस्ती ले है, पर भोजन रोग बन गया क्योंकि मनुख दी जीवन दा लक्ष्य भोजन बन गया। साहिब कहिंदे ने इस वास्ते बने कि इसने उसनु दुर्लभ समझ लिया है, दुर्लभ नहीं है। नच दुर्लभं भोजनं बिंजनं नच दुर्लभं स्वच्छ अंबरे, कीमती तो कीमती अंबर कपड़े पहन लेना साहिब कहिंदे ए भी कोई दुर्लभ नहीं है। बस्तर से तन ढकन लई, पर गजब दी गल बस्तर इस वास्ते होवे कि तन प्रगट होवे, तन दी नुमाइश होवे, तन दी प्रदर्शनी होवे। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा एक बड़ा कीमती शब्द है रन्ना होइयां बोधियां पुरख होए सयाद सील संयम सुच बन्नी, खाना खाज अखाज शरम गई घर आपने पत उठ चली नाल, नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा भाल। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी अपने ढंग दी सोचनी रन्ना होईयां बोधियां इस दौर दियां इस्त्रियां अपने आप नूं प्रगट करना चाहुंदियां नुमाइशी जिंदगी प्रदर्शित करना चाहुंदियां जो हाव भाव बनाओ सिंगार है ए पति दी प्रसन्नता लई नहीं दूजियां नूं दिखाण लई सिख सादी दे कुछ बोल भी बड़े कीमती ने ओ कहिंदा है अगर मैनू छड़ के दुनिया किधरे अंधी आउंदी ते मैनू किसे भी बनाओ सिंगार दी लोड़ नहीं अगर कोई बन ते समड़ रहा है सिर्फ दूजियां दी अखां लई घर दी प्रसन्नता लई नहीं अपनी लोड़ लई नहीं तो इस तरह दा बनना ते सवन्ना मन लई तन लई हानिकारक है साहिब कहिंदे ने इसी जगत इतना चंचल हो गया है नुमाइश करना चाहता है किसकी अपने ही तन दी और कपड़े इस ढंग दे पहनने कि हर एक दी निगाह तन ते पहुंचे मेरे तन ते पहुंचे पर महाराज कहिंदे जिथे स्त्रियां चंचल हो गई ने अपने स्वरूप दी नुमाइश करना चाहदियां ने उथे पुरुष सयाद हो गए ने पुरख होए सयाद फारसी दा लफ्ज है इहदे अर्थ ने शिकारी पुरुष इसे तलाश विच है कि प्रदर्शित कौन कर रहे है तन दी नुमाइश कौन कर रही है हुण पुरुष सयाद बन जाए तो स्त्री अपने आप नूं प्रदर्शित करे तो कुदरती गल है सयाद दा ओ शिकार बन के रह जाएगी इस विच स्त्री दा कसूर बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है धन गुरु नानक देव जी महाराज जो इस युग दे अवतारी पुरुष ने इस कमजोरी नूं इस ढंग नाल उजागर कीता है रन्ना होईयां बोधियां पुरख होए सयाद सील संजम सुच भन्नी कोई सील नहीं रहा कोई सुच नहीं रही कोई संजम नहीं रहा कोई पवित्रता नहीं रही सील संजम सुच भन्नी खाना खाज अखाज खाना भी ऐसा है जो अखाज है प्राकृतिक नियम के मुताबिक नहीं है भूख की पूर्ति वास्ते नहीं है शरीरक लोड़ा की पूर्ति वास्ते नहीं रह गया खाना खाज अखाज शर्म गई घर आपने पत उठ चली नाल नानक सच्चा एक है अवरना सच्चा वाल सतगुरु देव जी महाराज कहंदे ने हुण मैं सच की झलक किधरे वेखना चाह किसे मनुख दे चों नहीं मिलदी हुण सच की धड़क सिर्फ सच दे चों ही मिलदी है परमात्मा दे चों मिलदी है मनुखां दे चों जो है नहीं मिलदी मनुख इस हद तक जो है गिर गया तो पहनना सी तन नूं ढकण वास्ते पर पहनना हो जाए तन नूं प्रगट करन वास्ते इस वास्ते कह दिता जांदा है बड़ा ही खूबसूरत ते कीमती सूट भी किसी ने क्यों ना पाया होवे आख दिता जांदा है फलाना बहुत नंगा है हद हो गई कपड़िया विच ए नंगा क्यों है ए कपड़े पा के भी नंगा है क्योंकि इसके कपड़े सिर्फ अपने तन की प्रदर्शनी लई ने तन की नुमाइश लई ने इस वास्ते कहावत ठीक है ए कपड़िया विच भी नंगा है अगर कोई कपड़िया विच नंगा हो सकता है तो कोई नंगा ढकया होया भी हो सकता है गुरबाणी कहंदी है नगन फिरत रंग एक के ओ शोभा पाए पाठ पटंबर बिरथया जै रच लो भाए एक दे रंग विच रंगया होया है एक दी भक्ति विच लीन है शर्मो हया दा कपड़ा पहनया होया है भावे तन दे ते कपड़ा नहीं नगन फिरत रंग एक के ओ शोभा पाए पाठ पटंबर बिरथया जै रच लो भाए रीन रेशमी कपड़े पाके जो तन दी नुमाइश कर रहा है नगन है पर नगन रह के जो एक दी याद विच लीन है ढके होया है कजे होया है पर्दे विच है तो साहिब कहिंदे नच दुर्लभंग भोजनंग मंजनंग नच दुर्लभंग स्वच्छ अंबरे इस तो बाद मनुख ने जिस नूं दुर्लभ समझे ते जीवन उसका जिस दे आले दुआले परिक्रमा करता रहिंदा है ओ है नच दुर्लभंग सुत मित्र भ्रात बांधवे नच दुर्लभंग बनिता बिलासे भागशाली इस नूं मनिया जांदा है जिस दे बच्चे होवन भरा होवन पैणा होवन और पत्नी होवे हम ख्याल पति हम ख्याल पत्नी बच्चे हवन भरा हवन संबंधी हवन साहिब कहिंदे वड्डियां भागां दी ए निशानी नहीं है गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज ते साफ कहिंदे ने बड़ भागी तह जन को जानो जो प्रभ के गुण गावे ईश्वर दे गीत गाण वाला ही वड भागी है साहिब कहन नच दुर्लभ सुत मित्र ब्रात बांधवे एक दुर्लभ नहीं है चंगे मित्रां दा मिल जाना आज्ञाकारी पुत्रां दा मिल जाना हमदर्द भरावां दा मिल जाना नच दुर्लभंग बनता दिलासे स्त्री तो प्राप्त सुख ए भी कोई दुर्लभ नहीं है। अगर सब कुछ भी प्राप्त हो जाए तो लक्ष्यहीन जिंदगी फिर भी भटकती रहती है। हम ख्याल पत्नी मौजूद है पर हृदय च दुख भी मौजूद है। भड़ा दे रूप च बावा मौजूद ने पर बेसहारा जिंदगी भी खड़ी है। पुत्र आज्ञाकार मौजूद ने पर मन विच गुलामी दे भाव भी मौजूद ने। हमदर्द मित्र सामने खड़े ने पर बेसहारा जिंदगी भी सामने दिखाई दे रही है और इस सब कुछ दे होंदे आया बेसहारा है। मित्र भी है गे ने पुत्र भी है गे ने पत्नी भी हैगी है भरा भी हैगी है लेकिन फिर वो जीवन विच एक खला है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने इस खला की पूर्ति भरा नहीं कर सकते मित्र नहीं कर सकते पुत्र नहीं कर सकते और पत्नी नहीं कर सकती। नच दुर्लभंग सुत मित्र भ्रात बांधवे नच दुर्लभंग बनता बिलासे। इस तो बाद अगर मनुख प्रभावित है तो वह ज्ञान तो प्रभावित है विद्या तो प्रभावित है। आदि काल तो विद्वानों बड़िया बड़िया उपाधियां मिलदिया रही डिग्रियां मिलदिया रही और विद्वानों सम्मानित किया जाता रहा पर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज से कमाल करते ने आप कहते ने नच दुर्लभंग विद्या प्रवीणंग नच दुर्लभंग चतुर चंचले। विद्या दे प्रवीण हो जाना विख्यात हो जाना और चोटी दा विद्वान हो जाना और चातुर हो जाना हाजिर जवाब हो जाना हर प्रश्न दा उत्तर मौजूद होवे हर सवाल दा जवाब मौजूद होवे हर पक्ष दा सवाल चाहे वह सवाल कला दे संबंधित होवे चाहे वह सवाल विज्ञान दे संबंधित होवे चाहे वह सवाल धर्म दे संबंधित होवे इहदे कोल जवाब मौजूद होवे ए हर तरह दा विद्या विच प्रवीण होवे कोई ऐसा सवाल ना होवे जिसका कि यह जवाब ना दे सकता हो तो साहिब कहंदे इस तरह का विद्या दे प्रवीण हो जाना भी कोई दुर्लभ नहीं है। नच दुर्लभंग विद्या प्रवीणं नच दुर्लभंग चतुर चंचले। हैरानगी होगी अगर यह सब कुछ दुर्लभ नहीं है और जिंदगी का लक्ष्य नहीं है तो फिर जीवन का लक्ष्य की है। अगर धन भी जीवन का लक्ष्य नहीं रूप भी जीवन का लक्ष्य नहीं राजनीति भी जीवन का लक्ष्य नहीं खान पान पैरान भी जिंदगी का लक्ष्य नहीं है और धीया पुत्र संबंधी भरा भैणा पत्नी भी जिंदगी का लक्ष्य नहीं चोटी का विद्वान हो जाना विद्या विच प्रवीण हो जाना जे ए भी जिंदगी का लक्ष्य नहीं रस्ते दे पड़ाव ने तो फिर लक्ष्य की है। इस श्लोक की अखीरली पंक्ति विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने दुर्लभंग एक भगवान नामे नामिक लब्धयं साध संग कृपा प्रभंग। दुर्लभ है केवल एक परमात्मा दा नाम लभदा है गुरु दी संगत देचो प्रभु दी कृपा दा सदका। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज इस नु एक होर शब्द विच इंज भी बयान करदे ने अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कहिए नाम का जे प्रीत नहीं भगवंत। मुर्दा चाहे करोड़ापति होवे सताधारी होवे आखिर घरों कढ़ना ही पड़ेगा घर ले विच उस दे ले कोई थां नहीं चाहे वह अरबापति है चाहे शहनशाह है चाहे सताधारी है चाहे चोटी का खूबसूरत है चाहे चोटी का गुणवान सी घर विच उस लई कोई थां नहीं। इस वास्ते कहंदे ने किसी की इतनी बेइज्जती नहीं आउंदी जितनी मुर्दे की आउंदी। काढ़ो काढ़ो हई कढ़ो घरों घर चो कढ़ो ये गल वखरी है चलो रोंदे होया कढ़ो पर कढ़ो घर विच जगह नहीं है जिसनू घर विच नहीं रख सकते और सारे सोचन कढ़ो इस तो वड्डी होर बेअदबी की होगी। बेइज्जती का प्रतीक है मुर्दा। साहिब कहंदे ने अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कहिए नाम का जे प्रीत नहीं भगवंत। परमात्मा दा प्यार हृदय च नहीं ये खूबसूरत मुर्दा है ये धनवान भी मुर्दा है ये चतुर चंचल भी मुर्दा है ये विद्वान भी मुर्दा है इसे मुर्दे की तरह इसके लिए कोई थां नहीं है संसार विच इस दे लई कोई थां नहीं है निरंकार दे दरबार विच। दुर्लभ वस्तु है केवल परमात्मा दा नाम दुर्लभं एक भगवान नामे नानक लब्धयं साध संग कृपा प्रभं। पूरा श्लोक इस तरीके नाल है। नच दुर्लभं धनं रूपं नच दुर्लभं स्वर्ग राजने नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं नच दुर्लभं स्वच्छ अंबरे नच दुर्लभं सुत मित्र भ्रात बांधवे नच दुर्लभं बनिता बिलासे नच दुर्लभं विद्या प्रवीणं नच दुर्लभं चतुर चंचले दुर्लभं एक भगवान नामे नामिक लब्धयं साध संग कृपा प्रभं।
1: केलबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नु पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening to Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.
4: गौड़ी कबीर जी, जोत की जात जात की ज्योति, तित लागे कंचुआ फल मोती, कवन सो कर जो निरपो कही है, पौ पज जाए अभय होए रही है। रहाओ तट तीरथ नहीं मन पतियाए, चार अचार रहे उरझाए, पाप पुन दोए एक समान, निज कर पार सजो गुण आन। कबीर निर्गुण नाम न रोस, इस पर चाए परच रहो एस। गौड़ी कबीर जी, जो जन परमित परमन जाना, बातन ही बैकुंठ समाना, ना जाना बैकुंठ कहाँ ही, जान जान सब कहे कहाँ ही। रहाओ कहन कहा उन नह पति यही है, तो मन माने जाते हों में जई है। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरने।

गौरी कबीर जी और मुए क्या सोग करी जय तो की जय जो आपन जी जय मैं ना मरो मरगो संसारा अब मुहे मिलियो है जी आवन हारा रहाओ या देही परमल मह कंदा ता सुख बिसरे परमानंदा कूटा एक पंच पनिहारी टूटी लाज परे मतहारी कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी ना ओ कूटा ना पनिहारी गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनेक जन्म किए बहुरंगा ऐसे कर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ जोगी जति तपि ब्रह्मचारी कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी साकत मरे संत सब जीवे राम रसायन रसना पीवे कहो कबीर प्रभ कृपा की जय हार परे अब पूरा दी जय गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा ऐसो अचरज देखो कबीर दद कै पोले बिरोले नीर रहाओ हरी अंगूरी गधा चरे नित उठ हासे ही गय मरे माता पैसा अमुहा जाए कुद कुद चरे रसा चल पाए कहो कबीर प्रगट पई खेड ले ले को चूगे नित पेड राम रमत मत प्रगटी आई कहो कबीर गुरसो जी पाई गौड़ी कबीर जी पंच पदे ज्यों जल छोड़ बाहर पयो मीना पूरब जन्म हौ तप का हीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजीले बनारस मत पई थोरी रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप किया काशी मरण पया मगहर की बासी काशी मगहर संबिचारी ओछी पगट कैसे उतरस पारी कहो गुर गज शिव सब को जाने मुआ कबीर रमत श्री राम गौड़ी कबीर जी चोआ चंदन मर्दन अंगा सो तन जले काश के संगा इस तन तन की कवन बढ़ाई तरन परे उर्वार न जाई रहाओ रात जे सोवे दिन करे काम एक खिन लेह ना हर को नाम हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर मरती बार कस बांध्यो चोर गुरमत रस रस हर गुण गावे रामे राम रमत सुख पावे कृपा करके नाम दृढ़ाई हर हर बात सुगंध बसाई कहत कबीर चेतरे अंदा सत राम झूठा सब तंदा गौड़ी कबीर जी तिप दे चार तुके जमते उलट पए है राम दुख बिन से सुख कियो विश्राम बैरी उलट पए है मीता साकत उलट सुजन पए चीता अब मोहे सर्व कुशल कर मान्या।

ताप। अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। कहो कबीर सुख सहज समावो, आप ना डरो ना

आग निकट नीर पस्ती वसना चाग चेतत चेतत निश्चो नीर सो जल निर्मल कथत कबीर गौरी कबीर जी।

कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना जैसे कुबज कुरूप। गौड़ी कबीर जी जो जन ले खसम का नाओ, तिन कै सद बलिहार रह जाओ। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन भावे। रहाओ जे कट राम रहा परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर। जात जुलाहा मत का तीर, सहज सहज गुण रमै कबीर। गौड़ी कबीर जी गगन रसाल चुए मेरी पाठी, संच महारस तन पया काठी। ओ आ कहो कहिए सहज मतवारा।

तो अनुभव पाया गौरी कबीर जी। मन का स्वभाव मन है व्यापी, मन है मार कवन सिद्ध थापी, कवन सो मुन जो मन मारे है, मन को मार कहो किस तारे रहाओ। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत न होई, कहो कबीर जो जाने पेओ, मन मधुसूदन त्रिभुवन देओ। गौरी कबीर जी। ओए जो दिसे अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे, कहो रे पंडित अंबर का क्यों लागा, बूझे बूझन हार सवागा रहाओ। सूरज चंद करे उजियारा, सब में पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुखरा में होए। गौरी कबीर जी। वेद की पुत्री सिमरत पाई, सांकल जेवरी लह आई, आपन नगर आप

अब कुमारो कहत कबीर पले असवारा बेकदेव ते रहे निरारा। गौड़ी कबीर जी जे मुख पांचों अमृत खाए ते मुख देखत लू कट लाए। एक दुख राम राय काटो मेरा अग्न दह अर गर्भ बसेरा। रहाओ काया बिगूति बहुविध पाती को जारे को गडले माटी। कहो कबीर हर चरण दिखावो पाछे ते जम क्यों ना पठावो। गौड़ी कबीर जी आपे पावक आपे पवना जारे खसम ता राखे कवना। राम जपत तन जर की ना जाए राम नाम चित रहा समाए। रहाओ काको जरे काए हुए हान नटवट खेले

ना मैं जोग ध्यान चित लाया, बिन बैराग न छूट समाया। कैसे जीवन होए हमारा, जब ना होए राम नाम आधारा। रहाओ कहो कबीर खोजो आसमान, राम समान ना देखो आन। गौड़ी कबीर जी जे सिर रच रच बांधत पाग, सो से चुंच सवारे काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़ैया। रहाओ कहत कबीर सुनो मन मेरे, यही हवाल हो है।

ग्वारेरी अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद। सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगिया पावे। बिख्या अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं देखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। गुर प्रसादी जय दियो नामा, भगत के प्रेम इन्हीं है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे जोया हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जाने पेओ, ए मन लीन पे सुख देओ। जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को रव रहे कबीरा। गौड़ी ग्वारेरी एनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध पै लिव लागे। रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तर तारे। जो हर हरे सो हुए ना आना, कह कबीर राम नाम पछाना। गौड़ी भी सोरठ भी रे जी, नीलज लाज तोहे नाही। हर तज कत काहू के जाही। रहाओ जा को ठाकुर ऊंचा होई, सो जन पर कर जात न सोई। सो साहिब रहा पर पूर, सदा संग नाही हर दूर। कवला चरण सरन है जाके, कहो जन का नाही करता के। सबको कहे जास की बाता, सो समरथ निज पत है दाता। कहे कबीर पूरन।

तापो हर ठग जग कौ ठगौरी लाई हर के वियोग कैसे जियो मेरी माई रहाओ कौन को पुरख कौन को नारी या तत लेहो शरीर बिचारी कह कबीर ठग से मन मानिया गई ठगौरी ठग पहचानिया अब मोको पै राजा राम सहाय जन्म मरण कट परम गत पाई रहाओ साधु संगत दियो रलाए पंच दूत ते लियो छड़ाए अमृत नाम जपो जप रसना अमोल दास कर लीनो अपना सतगुर कीनो पर उपकार काड लीन सागर संसार चरण कमल स्यों लागी प्रीत गोविंद बसै निता निश्चित माया तपत बुझिया अंग्यार मन संतोख नाम आधार जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी जत पेखों तक अंतर जामी अपनी भगत आप ही दृढ़ाई पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई जिस कृपा करे तिस पूरन साज कबीर को स्वामी गरीब निवाज जल है सूतक थल है सूतक सूतक ओ पत होई जन्मे सूतक मुए फुन सूतक सूतक परज बिगोई कहो रे पंडिया कौन पवीता ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता रहाओ नैनो सूतक बैनो सूतक सूतक श्रम नहीं होई उठत बैठत सूतक लागे सूतक परै रसोई फासन की बिद सब को जाने छूटन की एक कोई कह कबीर।

यो मन बड़ा के जासो मन मानिया, राम बड़ा कह रहा मैं जानिया, ब्रह्मा बड़ा के जास उपाया, वेद बड़ा के जहां ते आया, कह कबीर हों पया उदास, तीरथ बड़ा

डा टूटा तिसना छान परी तर ऊपर दुर्मत पांडा फूटा। आंधी पाछे जो जल बरखे ते तेरा जन पीना कह कबीर मन पया परगासा उदय पान जब चीना। गौड़ी चेती इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हर जस सुने ना हर गुण गावे बातन ही आसमान गिरावे ऐसे लोग गुण क्यों क्या कहिए जो प्रभ किए भगत ते बाहर।

बैठत उठत कुटलता चाले, आप गए और अनहु काले, छाड़ कुचर्चा आन न जाने, ब्रह्माहू को कहो न माने, आप गए और अनहु खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे, अवरन

जीवत पितर ना माने को मुए श्राद्ध कराही, पितर भी बपरे कहो क्यों पावे कौआ कूकर खाही। मोको कुशल बतावो कोई, कुशल कुशल करते जग बिनसे, कुशल भी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा, तिस आ गए जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे कहिए आपन कहा न लेही। सरजियो काटे निर्जियो पूजे, अंत काल को पारी, राम नाम की गत नहीं जानी, पै डूबे संसारी। देवी देवा पूजे डोले, पार ब्रह्म नहीं जाना, कहत कबीर अकुल नहीं चेत्या, बिख्या स्यों लपटाना। गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे, ऐसे सुन समाया, अंजन माए निरंजन रही है, बौड़ न पवजल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है, गुरमत मनुआ अस्थिर राखो, इन विद अमृत पियोई है रहाओ। गुर के बाण बजर कल छेदी, प्रगटिया पद परगासा, सकत अंधेर जेवड़ी प्रम चूका, नेचल शिव कर बासा। तिन बिन बाणे तनुक चढ़ाई है, इहो जग बेद्या पाई, दह दिस बूढ़ी पवन चुलावे, डोर रही लिवलाई। उन मन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुर्मत पागी, कहो कबीर अनुपव इक देखिया, राम नाम लिवलागी। गौड़ी बैरागन तित दे, उल्टत पवन चक्र खट पे दे, सुरत सुन अनरागी, आवे न जाए मरे न जीवे, तास खोज बैरागी। मेरे मन मन ही उल्ट समाना, गुर प्रसाद अकल पही अवरे, नातर था बेगाना। रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे, जिन जैसा कर मानिया, अलौती का जैसा।

जीवन मृत न दुख सुख व्यापै, सुन समाज दो तह नाही। सहज की अकथ कथा है निरारी, तुल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती। हल्की लगे ना पारी रहाओ, अर्ध उर्ध दो तह नाही। रात दिन से तह नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही। सतगुर तहां समाही, अगम अगोचर रहे निरंतर। गुर कृपा ते नहीं है कहो कबीर, बल जाओ गुर अपने। सब संगत मिल रही है गौड़ी, पाप पुन दोए बैल बिसाहे। पवन पूजी प्रगासियो, तृष्णा गुण परी कट पीतर। इन विद तांड बिसाहो, ऐसा नायक राम हमारा। सगल संसार कियो बन जा रहा रहाओ, काम क्रोध दोए पै जगाती। मन तरंग बटवारा, पंच तत्व मिल दान निबेर है। तांडा उतरियो पारा, कह कबीर सुनो रे संतो। अब ऐसी बन आई, काटी चढ़त बैल एक थाका। चलो गोन छिटकाई।

पन खड़ी पाहू करे आए मुकलाऊ आए रहाओ ओ जे दिसे फूड़ी कौन लाज वहारी लाज कड़ी क्यों टूट पड़ी उठ चली पनिहारी साहिब हुए दयाल।

पंडित गुणी सूर हम दाते ये कहें बद हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुर मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दहने विकारा हर पद दृढ़ कर रही है। कहो कबीर गुण।

जै कछ अहा तहा किछ नाही, पंच तत तह नाही। इड़ा पिंगुला सुखमन बंदे ए अवगुन कत जाही। तागा टूटा गगन बिनस गया, तेरा बोलत कहां समाई। ए संसा मोको अंदिन व्यापै, मोको को ना कहे समझाई। रहाओ जै बर पंड पिंड तह नाही, रचन हार तह नाही। जोड़न हारो सदा अतीता, ए कहिए किस माही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए विनाशी। काको ठाकुर।

गौड़ी सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा सुन गुफा में आसन बैसन कल्प विवर्जत पंथा मेरे राजन में बैरागी जोगी मर्त न सोग वियोगी रहाओ खंड ब्रह्मंड में सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा तारी ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे होए पसारी मन पवन दोए तूंबा करी है जुग जुग सारद साजी फिर पई तंती सूटस नाही अनहद किंगरी बाजी सुन मन मगन पए है पूरे माया डोल न लागी कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी गौड़ी गज नव गज दस गज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बेहतर पाठ लगो अधिकाई गई बुनावन माहो कर छोड़े जाए जुलाहो रहाओ गजी न मिनिए तोल न तुलिए पाचन शेर अढ़ाई जो कर पाचन बेग न पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकत ए बेला कत आई छूटे कूंडे पी गए पुरिया चलो जुला हो रिसाई छोछी नली तंत नहीं निकसे नतर रही उर्जाई छोड़ पसार इहां रहो बपुरी कहो कबीर समझाए गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा होए महोए जित कट नाम ना उपजे फूट मरे जन सोए सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोहे रहाओ साध मिले सिद्ध पाये के एहो जोग के

कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे, छूटन हर की सेव गौड़ी। अग्न न दहे पवन नहीं मगने, तस्कर नेर नावे। राम नाम तन कर संचौनी, सो तन कठि न जावे। हमरा तन मादो गोविंद तरनी तर, यह सार तन कही है। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लही है रहाओ। इस तन कारण शिव सनकादिक खोजत पै उदासी, मन मुकंद जिहबा नारायण परे न जमकी फांसी। निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी, तास सुमत मन लादा। जलत अम्ब थम्ब मन तावत, परम बंधन पौ पागा। कहे कबीर मदन के माते, हृदय देख बिचारी। तुम कर लाख कोट अश्व हस्ती, हम कर एक मुरारी गौड़ी। ज्यो कप के कर मुस्त चनन की, लुब्ध ना त्याग दयो। जो जो कर्म किए लालच त्यो, ते फिर ग्रह परयो। भगत बिन बिरथे जन्म गयो, साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहो रहाओ। ज्यो उद्यान कुसुम पर फुल्लत, किन्हें ना कराओ लयो। तैसे प्रमत अनेक जून में, फिर काल हयो। या तन जोबन अर सुत दारा, पेखन को जो दयो। तिन ही माए अटक जो उर्जे, इंद्री प्रेर लयो। औद अनल तन तिन को मंदर, चौ दिस ठाट ठयो। कह कबीर पै सागर तरन को, मैं सतगुर ओट लयो गौड़ी। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। मैं ना ही कछ आहे न मोरा, तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ। इस माटी में पवन समाया, चूठा पर पंच जोर चलाया। किन्हू लाख पांच की जोरी, अंक की बार गगरिया फोरी। कह कबीर इक नीव उतारी, किन में बिनस जाए अंकारी गौड़ी। राम जपो जी ऐसे ऐसे, रूप प्रहलाद जप्यो हर जैसे। दीन दयाल परोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ। जा किस पावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे। गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आवन जानी। कहो कबीर भज सारंग पानी, उर्वार पार सबे को दानी गौड़ी। नामा जोन छाड़ जो जग में आयो, लागत पवन खसम बिसरायो। जीरा हर के गुना गाओ रहाओ, गर्भ जोन में उर्द तप करता। तो जठर अगर मैं रहता, लख चौरासी जोन प्रम आयो। अब के छुटके ठौर न ठायो, कहो कबीर पज सारंग पा।

रमैया गुण गाये जाते पाये परम निधान रहाओ। क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। संपै देख ना हर किया विपत देख ना रोए ज्यो संपै त्यों विपत है बिदने रचिया सो होए। कह कबीर अब जानिया।

जे रस बिसर गए रस और रहाओ और मुए क्या रोई है जो आपा फिर ना रहाए जो उपजे सो बिनस है दुख कर रोवे बलाए जह की उपजी तह रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेत्या राम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी लोचन परी ने उसासा पूर्णा पीजे पग न खिसे हर दर्शन की आशा उड़ो न कागा कारे बेग मिली जय अपने राम प्यारे रहाओ कह कभी जीवन पद कारण हर की भगत करी जय एक आधार नाम नारायण रसना राम रवि जय रागोड़ी यारवा आस पास कन तुलसी का बिरवा माज बनारस गाऊं रे ओ आकाश रूप देख मोहि ग्वारन मोको छोड़ ना आओ ना जाऊं रे तोहे चरण मन लागो तारंग तर सो मिले जो बड़ पागो रहाओ बिंद्रा बन मन हरन मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे जाका ठाकुर तुही सारंग तर मोहे कबीरा नाऊ रे गौड़ी पूर्वी बारवा विपल बस्तर के ते हैं पहरे क्या बन मद्दे बासा कहां पया नर देवा तोके क्या जल बोरे हो गया था जीरे जाहेगा मैं जाना अवगत समझ आना जत जत देखो बहुर ना पेखो संग माया लपटाना रहाओ ज्ञानी त्यानी बाउप देती इहो जग सगलो तंदा कह कबीर इक राम नाम बिन या जग माया अंदा गौड़ी बारवा मन रे छाडो परम प्रकट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रंते डरपे सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाये लीनो हाथ संदौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या विद जगत विभूता कह कबीर राजा राम न छोड़ो सगल ऊंच ते ऊंचा गौड़ी तेरवा फुरमान तेरा सिरे ऊपर फिर

नाम तेरा आधार मेरा ज्यो फूल जई है नार, कह कबीर गुलाम कर का जी आए पावे मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन में प्रमत नंद बहु ठाकोरे, भगत हेत अवतार लियो है पाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दिस नाही तब एहो नंद कहां थोरे। रहाओ संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर जाके माई।

जाय है, नाम पदार्थ मने बसाय है, हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक तोए, निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माए हमारा चीत, निंदक सो जो निंदा हो रे हमरा जीवन निंदक लो रे, निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उधार, जन

जा रहा हो। जब हम होते तब तुम नहीं, अब तुम हो हम नहीं। अब हम तुम एक भय हैं, एक कह देखत मन पतियाही। जब बुद्ध होती तब बल कहता, अब बुद्ध बल न खटाई। कह कबीर बुद्ध हर लई मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी, बांधी बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुलफ प्राण कर राखे, करते बार न लाई। अब मन जागत रहो रे पाई, गाफल होए कह जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ, पंच पहरुआ दर में रहते। तिनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चित होए रहो। तौले परगास उजारा, नौ कर देख जो कामन पूली, बस अनूप न पाई। कहत कबीर नवे कर मुसे, दसवें तत समाई। गौड़ी

बिखै रोग पै बंधन पागे, मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमत रत जान मान प्रभ, दूसर मने ना अनाना। चंदन बास पए मन बासन, त्याग कट्यो अभिमाना ना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर, तास प्रभु है खाना ना। ते बड़ पाग बस्यो मन जाके, कर्म प्रदान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगास्यो, एक है एक समाना ना। कह कबीर गुर पेट महासुख, प्रमत रहे मन माना ना।

बावन अक्षर लोक त्रै सब कछ इन्ही माहे, ए अक्षर खिर जाहेंगे ओए अक्षर इनमें नाहे। जहां बोल तें अक्षर आवा, जह अबोल तें मन ना रहावा। बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लखे न कोई। अल्लह लहो तो क्या कहो, कहो ता को उपकार। बटक बीज में रव रहो, जाको तीन लोक विस्तार। अल्लह लहंता पेद छे, कछ कछ पायो पेद। उलट पेद मन बेदियो, पायो अपंग अछेद। तुर्क तरीकत जानिए, हिंदू वेद पुराण। मन समझावन कारने, कछुक पढ़िए ज्ञान। ओंकार आद में जाना, लिख अर में कहता है न माना। ओंकार लखे जो कोई, सोई लख मेटना ना होई। कक्का किरण कमल में पावा, सत विगास संपट नहीं आवा। अर जे तहां कुसुम रस पावा, अकह कहां कह का समझावा। खखा एह खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ ना दह दिस्तावा। खसमे जान खिमा कर रह, तो होए निखेओ अखै पद लह। गद्दा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न तरी काना। रह विहंगम कतह न जाई, अगह गह गह गगन रहाई। कद्दा कट कट निमसे सोई, कट फूटे कट कबह न होई। ता कट माहे काट जो पावा, सो कट छाड़ अब कट कट तावा। नंगा निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह, ना ही देखना पाजी है परम स्यानप एहे। चच्चा रचित चित्र है पारी, तज चित्र चे तो चित्कारी। चित्र बचित्र एह अब चेरा, तज चित्र चित्राक्ष चितेरा। छच्चा एह छत्रपत पासा, छक के ना रहो छाड़ के ना आसा। रे मन मैं तो छिन छिन समझावा, ताए छाड़ कत आप बंदावा। जज्जा जोतन जीवत जरावे, जोबन जार जुगत सो पावे। हस जर पर जर जर।

0: सतगुर हाथ नबेद झगड़ चुका है।
1: मूर्ख झगड़ी पाते नहीं, गुरु झगड़े नबेड़ता है। लेकिन एक ख्याल कर ले, झगड़े झगड़े में भी अंतर है। मैं हैरान होया, दुनिया नु जंग युद्ध झगड़े इख्तलाफ टकराओ चंगे नहीं लगते। जिथे भी टकराओ पैदा हो जाए, झगड़े पैदा हो जाए, भावे परिवार विच होन, भावे संसार विच होन, भावे कौमां विच होन, वतन विच होन, बर्बादी हुंदी है। गुरु ने बाणी विच भी आख दिता, कहने लगे मैं देखदा की हां, कलह बुरी संसार वादे खपी है। कल कलेश कोई चंगी चीज नहीं, बुरी कल है, बुरी संसार वादे खपी है। वाद विवाद विच खप जाईदा, खूनियां तबाह हो जाती है। झगड़ा नहीं, गुरु अर्पित ना। कहने लगे कलेश चंगा नहीं, झगड़ा चंगा नहीं, पर हो रहा है। लेकिन कलेश देखना हो क्यों रहे, जिन्ना चिर असी उस दी तह विच नहीं जावांगे। कोई कलेश ऐसा भी हो सकता है, महाभारत का जंग होया, कहते हैं 18 कुड़ियां खत्म हो गई। मैदान जंग के दरमियान अर्जुन ने धन छुट दिता, उन्हें तीर चलाने तो

विज्ञवत विष्णु उठा मुर अर्जुन के हाथ देने वाला कौन है, अपने आप में भगवान अखवान वाला कुछ नहीं। आखरा अर्जुन जी आज तू हथियार सुख दिते कूट जित जाएगा, अन्याय ते जुल्म जित जाएगा। देख जुल्म दे सामने, अन्याय दे सामने, अपमान दे सामने हथियार नहीं सुखी दे। एक गल आखने वाला कौन है, भगवान अखवान वाला कृष्ण है। अर्जुन झगड़े तो बच रहे है, अर्जुन झगड़ा छड रहे है, कृष्ण झगड़े विच पा रहे है। पर एक गल आके पलिया, देख झगड़ा है किस चीज का। हलो अज भी इको लफज अंदर सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी ने झगड़े का कारण दस दिता, जिहड़ा झगड़ा अज साडे गल पिया है, जिन्हों सानू लोग विचों कुछ भोले भाले लोग आख भी दिंदे ने, कहंदे ने क्यों वाद विवाद शुरू करना सी। मैं एक गल कही सी पिछले दिनों की, भरे हो मैं इकला किसी कमरे में बैठा होवां, कोई मेरे नाल उस कमरे में ना होवे, झगड़ा किन्दे नाल होएगा। मैं इकला बैठा तो दूजा उस कमरे में है ही नहीं, किन्दे नाल झगड़ा करेंगे। जब उस कमरे में दूजा आ जाएगा तो दूजा भी वो आ जाएगा जिन्दे मेरे ख्याल नहीं मिलते होंगे, ख्याल ही इख्तलाफ होएगा, बस झगड़े का मुड़ बच गया। मैं कल्ला कमरे बच्चा, कोई झगड़ा नहीं, प्यार ही प्यार, मेरी अपनी सोच अपने आप में अंतर आत्म की खुशी बन गई। पर जब कोई दूजा आके उठे बैठा तो बैठा भी वो जिंदे मेरे ख्याल नहीं मिलते, बस कोई ना कोई गल छिड़ी नहीं तो झगड़ा होया नहीं, बस गल तुहाडे नाल एज ए एग्जाम्पल सांझी करना चाहना। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, गुरु दशम पातशाह बड़े महान सन, तो कदी नहीं सन चाहते मेरे गुरसिखा में झगड़ा हो, बल्कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी अपनी रचना से उठ प्रेरणा दे रही थी। गुरुमुख सखिया सिख, गुरु

गुरु तो यह चाहता है गुरु कोई सिखी पंथ नू खालसे नू आपस में लड़ता थोड़ो देखना चाहता है, झगड़ता थोड़ो देखना चाहता है, बिल्कुल नहीं। और गुरु ने कैसी मेहनत की है गल सोच के, क्योंकि ख्याल जदों भी इख्तलाफ होता है उदों ख्याल नहीं होता है, विचारधारक होता है। तो गुरु दसम पातशाह जी ने रहमत करके सिक्खी विचों झगड़े खत्म करने लई विचारधारक एकता लई ताकि उनके विचों आपसी स्नेह ते प्यार पैदा होवे, अपने तो बाद रहमत करके केवल तो केवल एक गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं सिंघासन दिता, दूजा नहीं बिठाया कि इख्तलाफ ना हो जाए। आसन तो एक हो, कोई झगड़ा नहीं, कोई टकराव नहीं।

गुरु गोविंद सिंह साहब जी की पवित्र फोर्स, उन्हें फैसला आप किया, इस ख्यालों किया दूजा हो गई कोई ना, झगड़ा ही ना हो गई। इक्का बाणी एक गुर इक्को शब्द विचार, विचार एक हो गए, गुरु एक हो गए, बाणी एक हो गए, सिंघासन इक्के गुरु का हो गए। जेड़ा आवे केवल इसके अगे नमस्कार करे, इसके अगे परिक्रमा करे, इसे दी बाणी ते विचारधारा नूं अपने जीवन का हिस्सा बनावे, ख्याली इख्तलाफ ही कोई ना रहे। पता जी इख्तलाफ कदों हुंदा, जिहड़ा गुरु नूं भी बाणी विच प्रवान करना पिया, कहन लगे हर के दास सिओं। एक पासे होवे गुरु दा सिख, एक पासे होवे कालका दा सिख, इख्तलाफ ते होएगा। मिसाल हर शांत ना रही, हर के दास सिओं साकत नहीं संग। उन्हां दी नेड़ता ही कोई नहीं, नानक मनमुखा नालों टुटी बनी। हर के दास क्यों ताकत नहीं संग, ओ बिखई उनके घर में जहर है, वो जहर का आदि हो चुका है, ते ओ अमृत पी वड्डा होया, अमृत विच्चों उसने जन्म लिया, दोवें दा रिश्ता किवें बने। एक तरह गुरु दशम पातशाह जी ने सिक्खी विच प्यार भरन लई, इख्तलाफ मिटाण लई, टकराव खत्म करन लई, झगड़े मिटाण लई एक फैसला दिता सी। इक्को गुरु दा सिंघासन होवे, कोई दूजा होवे ही ना, झगड़ा कित्थों होवेगा। ओ भले ओ जिन्हां दे मनां विच इह भुलेखे पाए जा रहे ने कि वाद विवाद खौरे असीं शुरू कीता, जेड़े लोगों नूं इह गल आखदे ने इन्होंने वाद विवाद शुरू, भले ओ श्री गुरु ग्रंथ साहिब इक्को ही सिंघासन बना दिओ, कोई वाद विवाद ही नहीं। वाद विवाद तो उन्होंने झगड़ा के खड़ा किया जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब के बराबर दूजे ग्रंथ का प्रकाश किया, दूजा बिठाया नहीं, झगड़ा पाया नहीं। एको सेवी अवर है दूजा, एको जाप एको सलाह, एक सिमर एको मना, एक के गुण गाओ अनंत, मंथन जाप एक भगवंत, एको एक एक हराप। किसी दूजे का संबंध कोई नहीं। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब का फैसला, और कैदी अजीब गल है, यह भी सतगुरु आख रहे झगड़ा होया क्यों है, इसलिए क्योंकि झगड़ा करने वाला शब्द की विचार नहीं कर लिया। झगड़ा कर दिया अंदन गुजरे, शब्द ना करे विचारो भोले आए, तेरा मेरा कोई झगड़े का तो साधन ही नहीं बनता। इको गल झगड़ा मिटा दिंदी है, आ दोवां ग्रंथां दे शब्द नूं आमो सामने रख के विचार लै, झगड़ा ही कोई नहीं। अजे तू वाद वाद कहना इस तो सौखा सीका कहना है, असीं ते बार बार इहो कहने भी भरियो आओ शब्द की विचार कर लो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की है, उस मां काल कालका आदि के ग्रंथ की है,

गुरमुख कमल प्रगासिय पाई हृदय हुवै प्रगास। प्रगट भया द प्रताप प्रभ पाई मौलिया धरत आकाश। गुरपूरै संतोखिया पाई एहन सलागा पाओ।

रजक संबाहे सास सास बाई गूढ़ा जाका नाओ जिस गुर पा साचा बेटिया पाई पूरा तिस करमाओ तिस बिन घड़ी ना।

देखो ऐसा नाम निरंजन होवे जे को मन जाने मन कोए। पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावें दरगह मान, पंचे सोहे हैं दरगाह जान, पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कहे करे विचार, करते कह करना नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख साब रख्या जन सूद। जे को बुझे हो वै सजार, तबले उबर के तापार, धरती होर पर होर होर, तिसते बार दलै कवण जोर। जी अजात रंगा के नाव, सबना लिखा बुढ़ी कलाम, ए लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखा केता होए, केता दान सोले रूप, केती दात जाने कौन गूत। किता पसाऊ को कवाऊ, तस्ते हुए लख दरियाऊ, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद भाव है साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर राम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर करें पार। नानक

अगम अगम असंख लो असंख कहें असर बार होई। अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुणगा अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सर संजोग बखाण जिने लिखे तैस सर नाहे जय फरमाए दिवत पाए जेता कीता देता नाओ बिन नावै नाहीं को थाओ कुदरत कवण कहां विचार वारिया न जावा।

आकाश है आकाश, कोड कोड को पाल सके वेद कहन एक बात, सहस अठारह कहन देवा स्लू कदात, लेखा हुए तो लिखी है लेखा हुए विनाश, नानक बड़ा आखी है आपे जाने आप, सारा ही सलाह इति सुरत न पाइया, नदियां अतः वह पवहे समुद न जानिए, समुद सा सुल्तान गिरह सेती माल तन, कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनो न विसरै, अंत न सिरधि कहण अंत, अंत न करण देण अंत, अंत न वेखण सुन अंत, अंत न जाप गया मनमंत, अंत न जाप गीताकार, अंत न जाप परवार, अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे, एहे अंत न जाने कोए, बहुता कही है बहुता होए, बड़ा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, ए बड़ ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए, जे बड़े आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखा ना जाए, बड़ा दाता तिल ना तमाए, केते मंगे जोध अपार, केतिया गणत नहीं विचार, केते खबद टैम बेकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्खाई खाए, केतिया दुख भूख संवार, एह पे दात तेरी दातार, बंद खलासी पाने होए होर आख ना सकै कोए, जे को खाए को आखण पाए, ओ जाने जे तिया मो खाए, आपे जाने आप दे आख से पे कही गए, जिसनो बख्शे से सलाह, नानक बादशाही पातशाह, अमल गौण अमल व्यापार, अमल व्यापारी अमल भंडार, अमल आवे मुल ल जाए, अमल पाए मुल समाए, अमल धर्म मुल दीवान, अमल तौल मुल प्रवान, अमल बख्शीस मुल निशान, अमुल कर्म मुल फरमान, अमुलो मुल आख्या ना जाए, आख आख रहे लिबलाए, आख वेद पाठ पुराण, आख है पढ़े करे बख्याण, आख मरमे आख इंद, आख गोपीता गोविंद, आख ईश्वर आख सिद्ध, आख गीते गीते बुद्ध, आख दानवे आख देव, आख सुर नर मुंजन सेव, केते आखे आखण पाहे, केते कहे कहे उठ उठ जाहे, केते किते होर करहे ता आख न सकै केई के। जे बड़ पावै ते बड़ होए, नानक जाने सचा सोए, जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखी असर गावा रंगावर, सो धर के हा सो करके हा जित मैं सर्व संभाले, वाजे नाद अनेक संखा केते वावनहारी, केते राग परिसं कही अन केते गावनहारी, गावे तो न पौन पानी वै संतर, गावे राजा धर्म द्वारी, गावे चित गोबद लिख जाने लिख लिख धर्म विचारी, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारी, गावे इंद्र दासन बैठे देवते आंदर नाले, गावे सद समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सति संतोखी, गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ भयाले, गावन रतन उपाय तेरे आठ सठ तीर्थ नाले, गावे जोध महाबल सूरा गावे खाणी चारे, गावे खंड मंडल वर पंडाऊ कर कर रखे थारे, सही तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चेतन आवन नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई, है पी होसी जाय ना जासी रचना आजिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन हो पाई, कर कर वेख किता अपना जिव तिस दी वड्याई, जो तिस पावै सोई करसी हुकम ना करण जाई, सो पातशाह शाह पात साहिब नानक रहण रजाई,
मुंदा संतोख शरम पर जोड़ी ध्यान की करें मैं भूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पांथी सगल जमाती मन जीते जग जीत आदेश दस आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण खटखट बजे नाद आप नाथ नाथी सब जान की रिद सदैव रसाद संजोग विजोग कर चलावे लेखे अवै पाग आदेश दस आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एक हमारी जुगत व्याई तिन झेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवान जब तस पावे तिवै चलावे जिव होवै फरमान ओह वेखै ओ न नजर न आवै बहुता एह बडाण आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश आसन दोय रोय भंडार जोग छपास एक वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश दस आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एक दूजी बहु लख हो है लख हो बै लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश ए तराह पद पवड़िया चढ़िया हुई अकीस सुन गला आकाश की गिटाया रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखण जोर चुपन है जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राजमाल मन सोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न ज्योति छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राति रोती सिर दीवार पवन पाणी अग्नि पाताल।

सुरहै जगते सुरहै ब्रह्मांड सहै कलखंड सहै परते परहै करुणा करहै अजप अजप है थप थप है अकृत अकृत है मृत अमृत है अमृत अमृत है करुणाकृत है कृत अकृत है धरणी धृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृत अकृत है मृत अमृत है अजब अकृत है मृत अमृत है निर्नायक है खलकायक है विश्वंबर है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है बहुपंजन है अर्गंजन है निरपदापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है अजप जप सप सप है अकृतकृत अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है कृताकृत है तरणी कृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजप कृत है अमृतामृत है निर्नायक है कलकायक है विश्वंबर है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है बहुभंजन है अर्गंजन है रपदापन है जप जापन है अकलंकृत है।

साच कहूं सुन लेहो सब जन प्रेम की उतनी प्रभ पायो काहू ले पाहन पोई तर सिर काहू ले लिंग कर लटकायो काहू लख्यो हर वची दिशा में काहू पिछा को शीश निभायो को बतान को पूजत पास को मृदान को पूजन दायो गुर करया और जो सभी जग शरी भगवान को भेद न पायो को बतान को पूजत है पास को मृदान को पूजन दायो

हैं, सब बैरन का वास करे हैं। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें झाड़ को अवर न जाऊं, जो भर जाओ तुम दे पाऊं। सेवक सेख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप दे मुझे भरे हैं।

जगत स्वरूप स्वयंभव अवरक्षा मेरी तुम करो शेख वार शेख करो दुष्टि अद्भुत पाता सकल मेरी करुण गाता जे अस्तोई तब सरणी परे तनके दोष दुप्त हव मरी पुरख जवन पग परे तिहारी तनके दो संकट सब टारे जो कल को एक बार ध्याय है ताके काल नहीं आए हैं।

प्रभ कदे ना विसरै प्यारे। नानक सतगुरबाण सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सोरठ महला पंजवां घर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब जग जिन्हें उपा

अपने दुख दर्द का हंता रहाओ। जा कह कर सब किस है पाई, नौनिध परे भंडार। तिसकी चरणी तिसकी कीमत ना पवै पाई, ऊंचा गम अपार। जी जा

तिस पावै ता मेल लह पाई हिरदय नाम निवास। गुरमुख कमल परगासी पाई हृदय

0: आत्मा वासुदेव जेको ॼाणे पियो नानक कदास कोई नरंज देव मला पहिला कुंभे वठा चले जना हो ज्ञान कव समर
1: ज्ञान न होए कोई पढ़िया हो।

इन मस्तक तोड़ हर लिखिया सतगुर मिलया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया।

0: स्मरण करने वाले गुरु गोविंद कल्पन दिन कर्तरा पर पूरे ना तुम दया वैसा पूरी आज पूरा व्यापार तो कहा धर्म धर्म का डेरा दूर नानक दूर मस्त का तेर तो सी तो खाई पत्नी का तो खाई वीर मस्त पैर और प्रवाह में स्थान रख दिया तो पाठिया का पक्का पक्का खाना चौक तो पूछना जाना देखे चौका से टीका रुपया है बैठे पूरिया
1: हक पिटे वे मत पिटे हमें सदा पिटे तर पिटे फेर करे मन तू फेर चली प्रेम कौन सत्य आइए
0: सच पाइए पौड़ी जितने अंदर सब को देख नजरी में चलाए

नमः सतगुर ए नमः श्री गुरुदेव नमः अष्टपदि सिमराओ सिमर सिमर सुख पावाओ काल कलेश तन माहे मिटावाओ सिमराओ जास विसंभर एक है नाम जपत अगणत अनेक है वेद पुराण सिमरत सुधाखियर कीने राम नाम एक आखियर।

प्रभु कै सिमरन रिद सिद नौ निध, प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध, प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभु कै सिमरन दिन सह दूजा, प्रभु कै सिमरन तीर्थ इशनानी, प्रभु कै सिमरन दरगाह मानी, प्रभु कै सिमरन होए सो पहला, प्रभु कै सिमरन सुफल फला, से सिमरह जिन

प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझ है, प्रभु का सिमरन सब किस सुझ है, प्रभु का सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु का सिमरन पूर्ण आशा, प्रभु का सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहि समाए, प्रभु जी बस है साध की रचना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु का सिमरह से धनवंते, प्रभु

प्रभु कौ सिमरहन से सुखवासी, प्रभु कौ सिमरहन सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला। प्रभु कौ सिमरहन से पर उपकारी, प्रभु कौ सिमरहन तिन सद बलिहारी, प्रभु कौ सिमरहन से मुख सुहावे, प्रभु कौ सिमरहन तिन सुख बिहावे, प्रभु कौ सिमरहन तिन आत्म जी।

सिमरन पूरे पहाग प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरे प्रभ कै सिमरन कबहु ना चूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी प्रभ कै सिमरन निहचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार सिमरह से जान जिनको प्रभ मया नानक तिन जान चरनी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाय हर सिमरन कर

नीच चहो कुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल अकारा हर सिमरन मह आप निरंकारा कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर

नाथ अष्टपदीम। जय मात पिता सुत मीतना पहाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महापयान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्किल होवे अत पहारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरुमुख नाम जपहो मन मेरे, नानक पावहो सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनक माया रंग तिख ना बुझावै, हर का नाम जपत आघावै। जिह मार्ग इहो जात इकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा ध्याइयै, नानक गुरमुख परम गत पाइयै। छूटत नहीं कोट लख बाहे, नाम जपत है पार पराहे। अनक बिघन जह आए संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै। अनक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हौ मैला मल तब हुन टोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। ऐसा नाम जप हो मन रंग, नानक पाइय ऐसा

जह महा भयान तप्त बहो काम तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जहां त्रिखा मन तुझिया करखै तह नानक हर हर अमृत बरखै। भगत जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साध कमात। हर जन कै हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंग एकै नानक जन कै बिरत बिवेकै। हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परै ना भंग। हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग हर नाम जपत कछना है वियोग। जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजा है हर हर देवा।

हर प्रताप जन अवर ना जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहो करे नानक जन संग केते तरे।

मन कामना तीर्थ दे छुटै, गर्व गुमान ना मन ते हुटै। सोच करे दिन सार रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबहू ना बिखिया करे। जल तो वह बहु दे अनीत।

पतत बहुमूच बहुत स्यान जमका बहु व्यापय अनेक जतन कर कृष्ण ना त्रापय देख अनेक अग्न नहीं बुझय कोट उपाव दरगहा नहीं सिझय छूट सनाही ऊब पयाल मोह व्यापह माया जाल अवर करतूत सगली जम डानय गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानय हर का नाम जपत दुख जाय नानक बोला सहज सुभाय चार पदार्थ जे को मांगय सार जना की सेवा लागय जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे।

बृहस्पति रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कम दृष्टानी जिन्तु साज स्वार श्रृंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार दूध पर जोबन भोजन सुख सूद।

तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा मह सुख कन्हेरे, कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत।

नानक जप जप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहै, मिथ्या हस्त पर दर्व कौ हिरहै, मिथ्या नेत्र तेत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार कौ तावहै, मिथ्या मन पर लोभ लुभावहै, मिथ्या

जिह प्रसाद बोल है अमृत रसना, जिह प्रसाद सुख सहज बसना, जिह प्रसाद हस्त कर चल है, जिह प्रसाद संपूर्ण फल है, जिह प्रसाद परम गत पाव है, जिह प्रसाद सुख सहज समाव है, ऐसा प्रत्याग

जो जो कह सो मुक्ता होए, सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा अष्टपदी। साध कै संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली।

कै नाम अधहार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी

ज्ञान भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाखियर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न

0: मनते तरय
1: इंद्री जित पंच दोह ते रहत
0: नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विष्णु की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म करत होवे निह कर्म तिस वैष्णो का।

राजा महान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक ओ पुरख कहिया जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊ जित जित कर राखै तैसा तिन नाऊ आपे करन करा बन जोग प्रभ पहवै सोई फुन होग पसरियो आप होए अंत तरंग।

ब्योहारी, कई कोट पह तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमह उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट पीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान का रहे, कई कोट कब का भी।

अनकित तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर अवतार, अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगह कहो कैसे गवै, आपस को जो

बड़ भागी नानक जन से सलोक सज हो से आनप सुरज नहुं सिमरहो हर हर राय एक आ

जिसका दिया रहे अघाए बोहर न कृष्णा लागे आए मारे राखे को आप मानुख कै कृष्णा ही हाथ जिसका हुक्म बूझ सुख होए जिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन ना लागे कोए उस्तत मन में कर।

धम्मन त्यों गुर का शब्द मन है असम्मन। ज्यो पाखाण लाव चढ़ तरह प्राणी गुरचरण लगत निस्तर है। ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए विकास। ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। तिन संतन की बांछों तूर नानक की हर लोचा पूर। मन मूर्ख काहे बिल लाइय पूर्व लिखे का लिखिया पाइय। दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तुम सहज तार। जो कछ करे सोई सुख मान उला काहे फिर है अजान। कौन बस्त आई तेरा संग लपट रहे रस लोभी पतंग। राम नाम जप हृदय माहे नानक पथ से ती कर जाहे।

हर कीर्तन गाई अनक बिगनते साधु राखै हर गुण गाए अमृत रस चाखै ओट गही संत है दरियाया सर्व सुख नानक तेह पाया मृतक कौ जीवालन।

सुनिए है करता कै राज महराज जोग मह जोगी तप महत पीसर गृहस्थ मह भोगी क्या है भगत सुख पाया।

तीरी महकल राखै, पसम करै लश्कर कोट लाखै, जिसका साहस न काट दिया ता कौ राखत देकर हाथ, मानस जतन करत बहु पा।

आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म है जान जन्म है पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम, सहस्त्यान पर लया ना जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए। सफल दर्शन पेट पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत, पेट संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे। सुनकर वचन करन आघाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर अखयो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट

ना पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किनै ना पाई, अनेक भगत बंदन नित कर है, चरण कमल हृदय।

हैं। जिस तन को चार कुंठ उठता रहें सो तन हर सेवा ते पार हैं। जिस सुख को नितमांच है मीत सो सुख साधु संग प्रीत। जिस शोभा को करह पली करनी सा शोभा भज हर की शरणी। अन क्यों पावी रोग न जाए रोग मिटाए हर अवखद लाए सर्व निधान।

कोय, जा कर दे बसे हर सोय, कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पौ बिन सह पूर्ण हुए आस, भगत पाए आत्म प्रगास, तित कर जाए बसे अविनाशी, कहो नानक काटी जम फासी, तत विचार कह जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा, आवागमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, यो रतन जन्म का हुए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनके उपाव न छूत नहारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करहु मन ला।

सुनत कहत रहत गत पावहो सार पूत सत हर को नाओ सहज सुभाए नानक गुन गाओ गुन गावत तेरी उतर समैल।

सुपार परे प्रेम रसरंग उपजा चाहो साध कै संग परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन विलाग बड़ भागी जपया प्रभु।

तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो इहो काम आम त्याग जपहो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो आप जपहो अवरह नाम जपाव हो भगत पाए तरिय संसार बिन भगती तन होसी शार सर्व कल्याण सुख निज नाम।

आपन तब कहते होता, जब तहरी आपन सुन समाध, तब बैर विरोध किस संग कुमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरख सोग कह किस है व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आप वर्तीजा, नानक करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी। जब एक है हरागमा पार, तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव शक्त कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तहै, तब कवन निडार कवन कत डरे। आपन चलत आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अविगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछ।

जह अवगत भगत है आप, जह पसरै पासार संत प्रताप, दूं पास का आप है तनी, उनकी शोभा उन्हू बनी, आप है कौतक करै अनंद चोज, आप है रस भोग निर्जोग, जिस पावै किस आपन नाए लावै, जिस पावै किस खेल खिलावै।

आवहो फलत पलत दो देहो सवार राम नाम अंतर उर तहार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै तिस साच परीखिया मन तन नाम जप होले वलाए दुख दर्द मन ते पौ जाए सच वापार कर हो वापारी दरगाह निभै खेप तुम्हारी।

संहार के आए, निर्भव जपै सगल भव मिटै, प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै, जिस प्रभु राखै तिस नाहीं दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन को कोई न पहुंचन हार, सिर ऊपर

रूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सो होत निहाल ता कै निकट ना आवत काल अमर भय अमर

कटमा है अनक रंग नन्हा दृष्टा है। नौ निधि अमृत प्रभ का नाम देही महेश का विश्राम। सुन समाध अनहत है नाद कहन ना जाई अचर्ज विस्माद। तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहया भगवंत। तरन माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल। बंतिर पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पानी बै संतर माहे चार कुंट दह।

अमृत मह देख, ससियर सूर निखियत्र मह एक, बाणी प्रभ की सबको बोलै, आप अडोल न कब हूँ डोलै, सर्व कला कर खेलै खेल, मोल न पाइय गुण है अमोल, सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, धार रहे हो स्वामी ओत पोत, गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन मह एहो विसास, संत जना का देखन सब ब्रह्म, संत जना कह हृदय सब धर्म, संत जना सुनहै शुभ बचन, सर्व व्यापी राम संग्रचन, जिन जाता तिसकी एह रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख मानै, करन करावन हार प्रभ जानै, अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पात।

कवन निकट कवन कहिया दूर, आपे आप आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए।

जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए, उहतनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, धन

ए रतन सुनत कमावत होत उधार, आप तरह लोक कह निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय। प्रगटे गोपाल।

अगे रहाओ है हो जाचक तू अलख अपेयो रहाओ। माया मोह सरकटी नार पूंडी कामण कामण यार। ए जो जीव रूपी इस्त्री है कहंदे ए माया ते मोह दे विच फसी पई है, अपने सिर तो कट्टी पई है। सरकटी नू कहंदे ने जेड़ी विभचारण हुंदी है। विभचारण इस्त्री एक पति नाल नहीं रहंदी, ओ दूसरे पतियां दे नाल कदी किते घूमदी है, किते घूमदी है। इसकी अगली पंक्ति है पूंडी कामण कामण यार। कामण इस्त्री नू कहंदे ने, पर ऐसी इस्त्री है जेड़ी घूमदी रहंदी है। स्वामी को ग्रह जो सदा स्वान तजत ने नित नानक ए विधार पजो एक मन होए एक चित। जिस तरह सुकर अपने द्वार नू कुकर अपने मालक दे द्वार नू छड़दा नहीं कुकर, इस तरह ही कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाव। हम कुकर तेरे दरबार। पर असी ऐसिया जीव रूपी इस्त्रियां वा कि असी घूमदिया ही रहिंदियां, कदी विषय भोगां विच जांदियां, कदी मन दे मनोराजां विच जांदियां, कदी माया विच प्रकृति विच फसियां पईयां। असी अज्ञान दी

से कोई बात ना पूछता, गुरु सतगुरु संग की रे हम थापे। गुरु जी कहंदे ने ऐसिया जीव रूपी इस्त्रियां जड़ियां माया दे चिकड़ विच फसियां पईयां ने, ते दिन रात कामणियार नू कहा है कि जेड़ी जादू टूने करन वाली इस्त्री हुंदी है। ऐसी कामण जेड़ी जादू दा मतलब जो होवे ना कुछ होर ही वेखी जावे। इस तरह ही है ता वाहिगुरु, असी वाहिगुरु च कदी स्त्री बन गए, कदी पुरुष बन गए, कदी माया बन गए। माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुने बोहरोल कचोला। गुरबाणी नू मनन वाली स्त्री केवल अपने गुरु गुरु नानक देव जी नू गुरु धारदी है। ओ आत्मा रूप करके तीरथ ते इनान करदी है। ओ होर मिथ्या शब्दां दा संग करके दर दर ते रुंदी नहीं। नाम मिले राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार। गुरु जी कहंदे ने ए दुनिया दे जड़े सारे रूप ने, ए राज ने, वड्डे वड्डे राजा भी रोवे जन्मे जा हो गया। इस तरह रोवे राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया। सारी दुनिया नाम तो बिना बाली रोवे नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार। एक नाम तो बिना अपा दुनिया कोई सहारा नहीं मिलेगा। जे असी जीवन च खुशी चाहते हाँ, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे, तो गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नू पढ़िया जरूर करो। पढ़ते पढ़ते आप दे अंदर वैराग पैदा होएगा, वैराग हंजू बन के आएगा। वो अथरू जदों आणगे ओ बिरहा बिरहा आखी है, बिरहा तू सुल्तान, जिस तन बिरहा ना उपजे सो तन जान मसान। इसलिए वैराग परमात्मा नू मिलन दा गहना है। नाम मिले चानन अंधियार, गुरु जी कहंदे ने जिसनू वो नाम दी रोशनी मिल गई, उसनू बाहरलियां रोशनियां दी लोड़ नहीं पैंदी। उसदे अंदर वो अग्ञान दा अंधकार मिट जांदा है, उसदे अंदर ब्रह्म ज्ञान पैदा हो जांदा है। वो आप ही नहीं बल्कि होरां नू भी नाम जपा के उसका लोक सुखिया ते परलोक सुहिला कर देंदा है। जग छोड़ी सहसा नहीं कोई, बाप दिसे वे जात ना हो। गुरु जी कहंदे ने सतोगुणी जी जदों परमात्मा नाल जुड़दा है, वो इस माया नू चंगी तरह देख लैंदा है, उनू संसा नहीं रहिंदा, अनुभव कर लैंदा है कि इस माया विच कुछ नहीं है। जिसका बाप सिर दे उत्ते हुंदा है, वो कदी बेजात नहीं हुंदा। ये जिहड़ी माया है, ये माया दे अंदर जे तां वाहिगुरु नू याद कर लिया, फिर तां असी बाप वाले हाँ। बाप दिलासा मेरो दीना कीना, सेज सुखाली मुख अमृत दीना। ऐसी सुंदर सेज अंदर है वाहिगुरु की, हिरदे विच रब वसदा पिया है। रब दे कोलों रब नू देखण वालियां अखां मंग लईए। ऐ नेत्रो मेरे ओ हर तुम मैं जोत करी, हर बिन अवर ना देखो कोई। ओ अखां गुरु जी आप ही कृपा करके देंगे। गुर है दिखायो लोहना, ईत है उत है कट कट कट कट, तू ही मोहना। गुरु जी कहंदे ने एक को ना ही पो कोए, जेड़ा एक नू मनदा इक ओंकार दा सिमरन करदा है, गुरु नानक देव जी दे मूल मंत्र दियां माला करदा है, और अनेक भ्रांति विच नहीं जांदा, भुलेख्यां विच नहीं पैंदा, उस नू कहंदे किसे किस्म दा डर नहीं लगदा। कई तरह दे डरां विच असी उलझे पए आ, मैं मर ना जावां, मैनू किते जमदूत ना लै जाण, पर ताप तुम्हारा देख के जमदूत छड जाए। ताप पाप संताप विनासे, हर सिमरत किल विकसा बनासे, आनंद करो मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पैज सवारी। शांत पाई गुरु सतगुरु पूरे, सुख उपजे वाजे अनहद दूरे। अंदर ही अनाहत नाद, अंदर ही अनाहत नाद है, अंदर ही आहत नाद है। फिर कीर्तन हुंदा है, पहले असी कीर्तन करन तो यात्रा करिए, नाम जपण तो यात्रा करिए, फिर अजपा जाप अंदर वाहे गुरु सूरत गाएगी। एक को पावना ही पो कोए, करता करे करावे सोई। ये करदा कौन है, ये समर्थवान कौन है, तू समर्थ वड़ा मेरी मत छोड़ी राम। ये करता पुरख ही आप सब कुछ करन वाला है, ते आप ही करवाण वाला है। गुरु नानक देव जी कहंदे शब्द मोए मन मन ते मारिया, कहंदे गुरु दा शब्द जदों मैनू मंत्र रूप करके मिल गया, मैं मन दे उत्तों मेरा मन मंदर बन गया, ते माया वाला मन मर गया। मन माया में रम रहो निकसत नाहे ना मी, नानक मूरत चित्र ज्यो छाड़त नाहे ना पी। ऐसा मन माया वाला मर के और मन मंदर तन वेस कलंदर गुरु

0: केळबोधी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

0: मेरे को गुरु दी वडियाई करके जिंदे नू जिला में सीने अग तर के मेरे को गुरु दी वडियाई करके जिंदे नू जिला में सीने अग तर के
1: जे तू इना गल्ला तो ना बाज आवेगा जे तू इना गल्ला तो ना बाज आवेगा याद रखी देवी चंदा पछतावेगा याद रखी देवी

0: तैनू नहीं पता है जे मेरे बल दा मेरे नाल लड़ू की न्याणा कल दा तैनू नहीं पता है जे मेरे बल दा मेरे नाल लड़ू की न्याणा कल दा
1: लहू हाथ मेरे पाजिया पर हमेगा लहू हाथ मेरे पाजिया

गुब्बारे की है, दान दरवाजा तेरे घर का दरवाजा एक छोड़ो है पिछले दिहाड़े में एक गल आ चुकी है कि लोग कई राह वक वक अपना के आ रहे हैं, हर किसी का अपना राह है, कई लंबे रस्ते आ रहे हैं, कई शॉर्टकट आ रहे हैं, उन्होंने दरवाजे भी वखरे वखरे हैं, पर स्थान एको है क्योंकि तू एक है इसलिए घर एको है। पिछले दिहाड़े की मैं कल कीती सी दरबार साहब के चार दरवाजे इनके घर वखरे हैं ना, रस्ता एक है गुरमत का रस्ता तो एक ही, पर जे भला कोई किसी होर दरवाजे वड़ना चाहे चौं विचों फिर कितने जाएगा, उस ही हरिमंदर जो कोई दूजे पासों प्रवेश करे कितने जाएगा, उस ही दरबार में पड़ा गल इस बिल्डिंग की नहीं, हे प्रभु तेरा कह है जिथे तू रहना, जिन्हिया खूबियां ने घर के अंदर ने, जिन्नी सजावट है जिन्नी डेकोरेशन है वो घर के अंदर है, पर जिसने घर आना है उन्हें दरवाजे की लोड़ है, इसलिए पहला दर पुछता है फिर घर पुछता है, जेड़ा दर से ही नहीं पहुंचे उन्हें घर की पहुंचना है। गुरु ने बाणी अंदर एक थावे ख्याल दे दिता बाजिया की गल भी नाल ही जोड़ दी, अपनी रचना तो आखन लगी है

गावन का, गावन का अर्थ होंदा किसी भी सिफत कला विच राग वर्तना। लो किसी भी सिफत कला विच राग वर्तना संगीत की है, सुर दे नाल जदों गीत शामिल हो जाए इकला भी गीत होंदा जिहड़ा लिखिया जा सकता। पर संगीत उदों बनता है संत भाव संजोग जदों स्वर दा ते गीत दा संजोग हुंदा है, मेल हुंदा है उदों संगीत बनता है। ओ ज्यादा सूक्ष्म हुंदा इकला स्वर, उन्हों कोई जानकार राग दा समझन वाला ही आनंद ले सकता है, गीत उन्दे नाल सुतूल हुंदा है। इसलिए दुनिया दा हर मनुख संगीत सुन के प्रसन्न हुंदा है, क्योंकि गीत दी समझ छेती आ जांदी है भावे उन्हों संगीत भी आवे ना। हुण की है गुरु कहन लगे है मेरे रब, जीवन जेड़ा है उस संगीत बन गया ते किवें बने, क्योंकि तेरी सिफत सलाह मेरे जीवन दे बने हुए नाद नूं तरतीब दित्ते हुए जीवन दे राग विच शामिल हो गई। मेरे जीवन दे राग विच तेरी सिफत सलाह शामिल, ते उस सिफत सलाह किस तरह बोल के नहीं प्रतीक बन गई। जो मैं हां ऐसे कुछ भी नहीं, ओ इस साबित करने लई हां कि तू कोई है जिन्हें ये पैदा किया है। क्या करियो फिर दोबारा पर आ गए, कुदरत जिन्नी है किरत जिन्नी है वो करते दी लखाई होती है, मुंह बोल दी तस्वीर होती है। कई गल्ला आखन की लोड़ नहीं पैती, किरत नूं वेख के ही पता लग जाता, मुंह बोल दी तस्वीर है, उन्दे गुण गा रही दस रही है कि जे फुल दस रहा है कि जे मैं एडा खूबसूरत हाँ कि दुनिया के लोग बनाने वाले नूं पुछो, बनाने वाले नूं पुछो, फुल दस रही है, खुशबू बोल के दस रही है, भलियो जे तुहानूं मैं चंगी लगी हाँ तो मेरे बनाने वाले नूं पुछो। लिखाए कोई जरूरी नहीं कि कोई बोल के आखे मैनू बनाने वाला फलाना है, फलाना आखन लग्या तो उन्हूं वो मसला फिर आ जाएगा कि आखन आख है सगुण बाणी को बार बार दोहराया, कहन कहावन को कई केते, आखन वाले बड़े ने जिहड़े आख आख के थक गए। आखन की लोड़ है, तू अपने जीवन नूं वो रूप बना कि लोग आखने नूं बनाने वाला कौन है। उन्हों गुरु नानक की सिफत कर करके दुनिया में दसन से किताबा लिखन की लोड़ नहीं, वो अपना जीवन बनावे कि लोग आखने में बनाने वाला कौन है। असं अजे तक किताबा लिख रहे हैं, अजे तक कीर्तन दरबार कर कर वड़े वड़े प्रचारक पैदा करके दुनिया अंदर भेज के असं समझ रहे हैं प्रचार करना नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्योंकि असं अपने आप में उस प्रचार के मुताबिक नहीं चल रहे। असी केवल जबानों आख आख के लोगों नूं आख रहे हैं साडा गुरु नानक वड्डा है, तू वो बन कि तेरा अपना जीवन अपने आप विच ये लखाइक हो जाए कि लोग वेख के आखन है इस जीवन नूं बनाने वाला कौन है, वो केडा महान होवेगा। गुरु ने इत्थे आ लखाइक दी पूजा वरती, इसे लई लफज गावन वरते बोल के आवाज दे के दस रहा है, पर इस तरह नहीं कि आवाज बोल के, बल्कि जिन्ना कुछ कर रहे हैं जिस भी किसी चीज दी, जिस भी घर दी डेकोरेशन दी, इस कुदरत दे जिस हिस्से नूं भी देखना वो अपने आप बोल के दसदा है, अपने आप लखाइक हो जाता है कि मैनू

मैं जो तेरी इस प्रकृति सृष्टि इस कुदरत के घर में प्रवेश किया है ते कीता है गुरु के बख्शे हुए ध्यान राही उदो मैनू इस सृष्टि का सारा नजारा तेरा लिखाए की दिखा है जेडे क्यासे हुए देवी देवते ने वह भी मन नू तेरे ही लखायक ने तू तेरे चाकर ने कोट विष्ण कीने अवतार कोट ब्रह्मंड जाके धर्मसार कोट महेश उपाय समाए कोट ब्रह्म में जग साजन लाए ऐसो तनी गोविंद हमारा गल ते गोविंद ते मुकदी लखाई तेरे ने जिन्हें करोड़ा विष्णु पैदा कर दिते जिन्हें करोड़ा ब्रह्मा पैदा कर दिते जिन्हें करोड़ा शिव पैदा कर दिते ते उन्हें अपने अपने आर ला दिता ऐसा तनी कौन है देखना तेरे है लिखायक ने इस गल दे ऐसो धनी गोविंद हमारा वरन न साखो गुण दिखा ऐसे पूछ रहे वो लिखायक ने इस गल दे।